प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। भिन्न भिन्नाते रहने वाले पुरुषों के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहें, जो कुछ हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आज साथी दंपावलंबी आकाशवाणी के अरुण एफएम से हार्दिक स्वागत करती हूं। सन 2026 जुलाई महीने के आज 21 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता डी नियो। श्रोता, रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे देरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की आरंभ करते हैं। श्रोता, आइए हम जानते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोता, अब से कुछ ही पलों में 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 6:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज, 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत और 6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोता का समाचार, 6:45 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। पर आप सुन पाएंगे अवधानी श्रोताओं का समाचार, 7:15 पर मॉर्निंग इंटरटेनमेंट और 7:35 पर आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। सात पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदाबहार और 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:23 पर आप सुनेंगे शिलोंग केंद्र से प्रसारित नोटिस न्यूज, 8:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। नौ बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 9:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज, 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप और 10 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 10:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। दस पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड और 11 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 11:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। तो श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में यानी 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज और 6:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। तब तक के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा की विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम भक्ति गीत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे आपातानी भाषा में दानी पोलो गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अपनी भाषा में दोनी पोलो भक्ति गीत। अब आप सुनेंगे गलो शताब का समाचार। तब तक के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर तेनलो पोलग चामीगोला लॉकिन गाली अरलो गालो मेके नगम मेन्जी दुनसी लिफर गद। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूला मोल्दोवान के प्रेसिडेंट माला सांडू मुनिमेरो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर हेल्थ केयर रेन्यूएबल एनर्जी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन सेक्टर्स लो बुध व अगर गर्वाम दब तरक निकोक एमरगेबा सिसनावलो डेलीगेशन लेवल टॉक्स एमरीरोबकु जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट लो प्रेसिडेंट मुर्मू मुग विजित नाम एम माइलस्टोन गोबे जाब्दुला जिगी रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा लो इंडियन प्रेसिडेंट विजित नाम रुत्व एजितु दिताक चामुम गोबे देश अनिगे फेन कोलो आया एम कातो मिंजिला दौला जिलोग विजित कुनाम जोक देश अनिगे मतिन मिंजी नाम एम काफा मोका एलासिन नेली मुर्मू जाब जितु मरो पार्लियामेंट लो ओपोजिशन पार्टी ए नीट पेपर लीक केस एम मेंताला कब कब इश्यूज लो प्रोटेस्ट नाम लगावे हाउस एम एजन तकु जेबे प्रोटेस्ट कलक हाउस आने मे गो एजन रियार का लोकसभा ए 11 AM लो मुनुक परमार मेम्बर्स एके अलोगनो जिले कुला ट्रिबूस जिला मरो रे तो ने कुने गद्दे नादेंतला भास्करा राव ओमवाती देवी सुदांशु सील मेजर जनरल रिटायर्ड बुआन संद्रक कंदुरी केपी दाना फलन ओके प्यारेलाल संकुआर मुनुकु हाउस फादर अमीरोप कतर शेख हमद बिन कलीफा अल तानी नेचिन ट्रिब्यूट जितु शेख हमद मु इंडिया कतर के रिलेशन एम अल मोनामलो दिन चिने रोल रिजिरातो एला लोकसभा स्पीकर ओम बिल्ला मु जब जितु यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 देश जोक स्कूलो अमीन इल्लिक ने 25 करोड़ गोबर दुकु लोकसभा लोमेरो पोताव एरिक कोलो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र फोर्डन मेनरिकला नेट एनरोलमेंट रेशियो 2024-25 लोक मेन रिजिर 2025-26 लो चेकेगो अत्या का ओके जेंडर फेरिटी इंडेक्स 1.0 ओके एम अत्याला आउ निजिर गदिगे स्कूल लो एक्टिव पार्टिसिपेशन एम मेगो कापादु एलाचिन मेंटु ओके निजिरिया में लगावे टॉयलेट बाथरूम अधिक मोजिला ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट कनेक्शन ला जिला ओके कब कब फैसिलिटीज ऐसी चकेगो इम्प्रूव काकु एला मिनिस्टर फर्डन जब जितु मेन के नागम सिमनुन आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन लोक के तफादु केनलो सन्डे ओगो गुवाहाटी लो नेशनल सेमिनार फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटिंग भारतीय इतिहास एंड भारतीय जनाना परंपरा इन मॉडर्न गवर्नेंस एंड आईटीजिया अन वेसन 5128 के फेलेलो रुगे कोलो गवर्नर केटी फर्नाक्चिन रिलिक्तु सेमिनार के लगे लगा एम जाब्दुला गवर्नर मेंटु जिगी बेदा वाइशिया वाल्मीकि सनकिया आर्यभट्टा सुश्रुता पतंजलि अशोका आदि शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद गुरु नानक देवजी सरदार पटेल ओके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गारिने ग्रेट थिंकर्स ओके नेशन बाइलर्स गदिगे विजडम एम माकुरदब अलने अपॉर्चुनिटी जिदु एला जाप्तु मुनुगे गवर्नेंस साइंस हेल्थ केयर स्पिरिचुअल ओके नेशन बाइलिंग लो कंट्रीब्यूशन जिनाम जिलो लवे सोसाइटी एम अलने बेदा कातम तु एलाचिन गवर्नर जाप्तु दोनिलोम सेमिनार एम फ्राइडे ओगरिरो लाभ भारतीय इतिहास संकलन समिति असम एला अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज गतु अरुणाचल प्रदेश के अनसंग हीरोज गदगे दोयु लुमा एम आले देने गुसा जुसा ने गदगे गु नाम लोबे कातम नाम लगावे एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना मेमेरो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज एमला अमर सीत्रा कतालोक रिप्रेजेंटेटिव्स एम के बाद हुए का सोशल मीडिया फोर्स लोग कवर एम जिदुला निर्मसोनाम मेनफाजिला अनसंग हीरोज ग डॉक्यूमेंटेड लाइफ्स बेस ला कॉमिक बुक ओके टू डी एनिमेटेड एजुकेशन कंटेंट मजे ओके किताब पढ़ी ने मनुग नाम लोग दोयम काला कागज जिदो रिमोजम केवालो जमीन जितवा एला मेन जितु लफारदा डिस्ट्रिक्ट दिसि हिमानी मीनामेरो डिस्ट्रिक्ट आरालो डेवलपमेंट स्कीम ओके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट रिनाम लोग फिनेंशियल ओके फिजिकल प्रोग्रेस एम कादी तादी गदवे डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी के बागो दुगबेनी केवालो प्रोजेक्ट मोलेन रोनाम मंगो जिदुनाम ओके सेंगसन रुते पिंगनाम लोग स्टेटस एम आल जावे काला ताला रिवाम तु स्टेट ग डिस्ट्रिक्ट इरिगोला कोना गलो आई एम डी येलो एलर्ट जिला जो के मोको मोकलो दोगुम दौरा रखताला निदो अच्छी ओवर एल्फ एला मेन जितु फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल लो इस फेने डिफेंडिंग चैंपियनशिप अर्जेंटीना एम एक्स्ट्रा टाइम लो गोल अपिलो तुगुमला वर्ल्ड कप एम लागे कुबा गोल एम इस फेन ग सब्स्टिट्यूट बे आने फेरान तोरेस में 106 मिनट लो न्यूयॉर्क ग न्यू जर्सी स्टेडियम लो जितो जब तुपाक नाम लोग इस फेने मेन्स ओके वोमेन सोशल लोके वर्ल्ड कप एम लाने देश ऋतु बे रिका कैजिरगा गालो मेन के नागो में एग तन गद्दम ले को दारो काम बे दूला काजुंगो नो जिरगा गालो ने ने मावा

0: Gaya eta miro oke mi ga menti ga tiga fonu bari loke talaju.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गालो श्वेताओं का समाचार। गालो श्वेताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेव चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत फिल्म हम आपके हैं कौन से, और गीत के बोल हैं ये मौसम का जादू। जी हाँ, और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने।
2: Let's start the fun!

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत आशा भोसले की आवाज में। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में। जी हाँ, और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से। गीत के बोल हैं आते जाते, और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपदानी श्रोताओं का समाचार। आपदानी श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, और अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट।

दोस्तों, कल का मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत फिल्म चलते चलते से। गीत के बोल है सुनो ना, और इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत कुमार शानू की आवाज में फिल्म परदेश से। जी हाँ, और आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में। और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत एक था दीवाना फिल्म से। जी हाँ, और गीत के बोल है होसाना और इस गीत को आवाज दी है लियोन डिसोजा और सुजन डी मेलोनी।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार। कार्यक्रम सदाबहार में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे मौसम के अपडेट्स के साथ और सुनेंगे बेहतरीन सदाबहार गाने, जी हाँ, फ्रॉम द ओल्ड कलेक्शन जी। और कार्यक्रम में सबसे पहले चलिए नजर रखते हैं मौसम की अपडेट्स की। और आज 21 जुलाई को ईटानगर का वेदर कुछ इस तरह रहेगा। दिन भर हल्की से माध्यम बारिश या रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री सेल्सियस। आसमान ज्यादातर बादलों से ढका रहेगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए गर्मी और उमस महसूस हो सकती है। शाम या रात के समय गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अम्ब्रेला या रेनकोट साथ रखना अच्छा रहेगा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में मॉनसून एक्टिव रहेगा। जी हां, IMD के मुताबिक कई इलाकों में हल्की से माध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। कुछ मुख्य डिस्ट्रिक्ट्स के अपडेट्स, तवांग हल्की से माध्यम बारिश, कुछ जगह गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वेस्ट कामेंग बोमदिला दिन भर बारिश के आसर और ईस्ट कामेंग सेपा माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पापुमपारे बारिश और बादल छाए रहेंगे। लोअर सुबनसिरी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वेस्ट सियांग यानी आलो हल्की से माध्यम बारिश, ईस्ट सियांग में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। लोहित तेजू माध्यम बारिश के साथ आसर हो सकते हैं और चांगलांग कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। तिरप बारिश और गरज चमक की संभावना है। अब चलिए दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं सदाबहार गाने, जी हां, फ्रॉम द फिल्म जब प्यार किसी से होता है। दोस्तों इस गीत के बोल है 100 साल पहले और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म बॉबी से जी हाँ, और आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम सदाबहार में।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार में, और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत राम तेरी गंगा मेली फिल्म से जी हाँ, और गीत के बोल है हुस्न पहाड़ो, और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और सुरेश वर्कर ने।

दोस्तों इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र और शिलांग केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगे। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमरीका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
3: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। वचप दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएसपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में एफआईएच यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, एसआईटी के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with her North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially able persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
7: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with wider Eastern European region. Both sides have shown keen interest in deepening economic ties in priority sectors such as agriculture, pharmaceuticals, science and technology, information technology, and IT-enabled services. North Macedonia is a landlocked country in southeastern Europe. The Indian community in the country is very small, with most members working in the IT sector, teaching at universities, or serving as executives in multinational companies. With Subhashree Mahapatra, this is Yashasvi Kiryal for Akashvani News Delhi.
6: India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odessa in Ukraine. External Affairs Ministry said 4 Indian nationals have tragically lost their lives while 1 is hospitalized in a critical condition. The ministry said that at the time of the incident, there were 17 crew members on board, including 5 Indian nationals. The ministry has reiterated that targeting commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding freedom of navigation and commerce is deplorable and should be avoided. The ministry said that the Indian mission in Ukraine is closely monitoring the situation and is making every effort to extend all possible assistance to those affected. The government of India extended deepest condolences to the families of the deceased Indian nationals and wished them speedy and full recovery. External Affairs Minister S. Jaishankar met his Panamanian counterpart Javier Eduardo Martinez Acha Vasquez in New Delhi. With the meeting, Dr. Jaishankar underscored the importance of deepening India's engagement with Panama as a gateway to Latin America and the Caribbean region. Both leaders held wide-ranging discussions, including advancing trade, business development, maritime, health, agriculture, education and digital cooperation. They also spoke about engagement at the multilateral fora. Earlier, External Affairs Minister expressed confidence that the visit of the Panamanian Foreign Minister, Javier Eduardo Martinez Acha Vasquez, will further strengthen bilateral ties across all sectors.
8: Panama serves as a natural bridge for us for global trade routes, gateway for the wider Latin America region. And anchored by the Panama Canal, your logistics infrastructure certainly sets a global landmark. We value your interest in collaborating across a wide array of domains from education, scholarships, pharmaceuticals, technology, and of course, most important, trade. We note that you have had a consistently high growth trajectory, and as we ourselves accelerate our development towards the quest of Viksit Bharat or developed India by 2047.
6: Prime Minister Narendra Modi has congratulated N.D. Burnham on assuming office as Prime Minister of the United Kingdom. In a social media post, Mr. Modi said that India and the UK are bound by shared democratic values and enjoy wide-ranging cooperation across trade, investment, technology, defense, and people-to-people relations. He noted this, that as India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, enters into force this month, the bilateral partnership between the two nations is poised to grow even stronger. The Prime Minister added that he is looking forward to working closely with Mr. Burnham to deepen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership further and advance the shared vision 2035. This is Akashwani giving you the news for quick news updates around the clock. Follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. West Bengal government has hiked a monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state from 1,000 to 1,500 rupees per month from next month. In an official order released yesterday, the government said that the enhanced assistance will be disbursed to all eligible beneficiaries through the existing direct benefit transfer DBT mechanism. In a social media post, BJP's in charge of National Information and Technology Department, Amit Malviya, said that the marginalized communities of West Bengal were left behind by administrative apathy for years. He said the BJP government in West Bengal is driving a profound shift towards meaningful, inclusive growth, and the state's decision to raise the social welfare pension amounts by 50% is a clear manifestation of this vision. The Election Commission is organizing an international conference in Kolkata today to discuss the process of making the postal ballot system more inclusive, secure and accessible. The conference has been jointly organized by the India International Institute of Democracy and Election Management, IIIDEM, and International IDEA. We have

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित और शिलांग केंद्र से प्रसारित समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीत और कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम में नजर रखते हैं कुछ खास ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आज के दिन हो रही है। जी हाँ, और दोस्तों आज करची पूजा त्रिपुरा में मनाया जा रहा है। जी हाँ, करची पूजा त्रिपुरा खासकर ओल्ड अगरताला का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन त्योहार है। दोस्तों करची पूजा 7 दिन तक लगातार मनाई जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य धरती माता यानी मदर अर्थ की शुद्धि करना माना जाता है। दोस्तों त्रिपुरी परंपराओं के अनुसार आमापेची नाम के एक पवित्र आबादी के बाद धरती को शुद्ध करने के लिए करची पूजा की जाती है। करची शब्द का संबंध त्रिपुरी भाषा के क्या धरती से माना जाता है। इस त्योहार में देवताओं की पूजा की जाती है। पूजा के पहले दिन इन देवताओं की प्रतिमाओं को पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। फिर मंदिर में लाकर विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों इस 7 दिन विशेष पूजा और आरती की जाती है। भजन और पारंपरिक मंत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत बड़ा मेला होता है। करची पूजा त्रिपुरा की ट्राइबल और हिंदू परंपराओं का एक अनोखा संगम मानी जाती है और राज्य के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है। दोस्तों अभी चलिए कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं एक बेहतरीन फिल्मी गाना फ्रॉम द फिल्म दावत ए इश्क। और गीत के बोल है शायराना और इस गीत को आवाज दी है सलमाली ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में चलिए नजर रखते हैं इतिहास के दिन। जी हाँ, आज के दिन क्या हुआ दोस्तों। 21 जुलाई को भारत के इतिहास में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार है। 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। जी हाँ, आज ही के दिन 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आधिकारिक मंजूरी दी। आजादी से कुछ हफ्ते पहले लिया गया यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। आज ही के दिन 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और आज ही के दिन 1883 में कोलकाता में पहला पब्लिक थिएटर शुरू हुआ। दोस्तों, कोलकाता में स्टार थिएटर की शुरुआत हुई, जिसने भारतीय रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1963 में काशी विद्यापीठ को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। और हम देश और दुनिया की देखें तो आज ही के दिन 1969 में अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने। दोस्तों, आज ही के दिन 365 एडी में मेडिटेरेनियन क्षेत्र में एक बहुत शक्तिशाली भूकंप और सुनामी आई, जिससे हजारों लोगों की जान गई। और 1542 में पोप पॉल्ट्री ने रोमन इंक्विजिशन की सप्ताह की। और 1831 में लियोपोल्ड वन बेल्जियम के पहले राजा बने। दोस्तों, आज यानी 21 जुलाई का दिन सबसे महत्वपूर्ण भारतीय ऐतिहासिक पल माना जाता है। 1947 में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाना, क्योंकि इस फैसले के बाद आजाद भारत का आधिकारिक झंडा तय हुआ। दोस्तों, इसी के साथ ही अब चलिए कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं। आपके लिए पेश कर रहे हैं नॉन स्टॉप फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म कोई मिल गया। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके लिए प्ले कर रहे हैं इस फिल्म का टाइटल ट्रैक। और इस टाइटल ट्रैक को आवाज दी है उदित नारायण और कैस चित्रा ने।

200 गीत के बाद अब कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत लव यू मिस द कलाकार फिल्म से। जी हाँ, और गीत के बोल है सरफिरा साहे दिल, और इस गीत को आवाज दी है नीरज फिदार और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त होते हैं। और आपको बता दो कि अब से कुछ ही पलों में यानी 9 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय पार्टी की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में होगी। इस बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक आमतौर पर संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूरी एकजुटता को दिखाना है। बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री मोदी को सम्मानित करते हुए एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत कल हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कल कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
2: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिकम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों में व्यापक सहयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहली अगस्त से वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंशकरुणन भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी The news read by Shagun Chopra. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with the North Macedonian counterpart Gordana Siljanuska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Ristian Mikoski and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of a three-nation tour of Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance of India, which India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with the wider Eastern European region. India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odisha in Ukraine. The External Affairs Ministry said four Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that at the time of the incident, there were 17 crew members on board, including five Indian nationals. The ministry has reiterated that targeting commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding freedom of navigation and commerce is deplorable and should be avoided. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the ranks of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi Police said during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behaviour and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. The West Bengal government has approved the enhancement of monthly financial assistance under social welfare pension schemes for old age, widow and disability pensions from 1,000 rupees to 1,500 rupees from 1st of next month. In an official order released yesterday, the government said that the enhanced assistance will be disbursed to all eligible beneficiaries through the existing direct benefit transfer mechanism. Moreover, Chief Minister Suvendu Adhikari-led BJP government also enhanced national social assistance program monthly pensions from 1,000 rupees to 1,500 rupees. Monsoon activity continues across most parts of Himachal Pradesh with rainfall persisting in many areas. Meteorological Center Shimla has issued a red alert for heavy to extremely heavy rainfall in five districts of the state today. More from our correspondent.
4: Persistent monsoon rains have affected normal life in several parts of Himachal Pradesh. Many link roads remain blocked due to landslides, while power and drinking water supply have been disrupted in some areas. Restoration work is underway. The Meteorological Center Shimla has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall today in Kangra, Mandi, Chamba, Sirmaur and Kullu district. As a precaution, all government and private educational institutions will remain closed for the second consecutive day today in Kangra, Mandi, Chamba and Sirmaur district. The administration has urged residents and tourists to avoid unnecessary travel and stay away from rivers, streams and landslide-prone areas. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
3: U.S. has launched fresh strikes on Iran. In a social media post, U.S. Central Command said that the strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. U.S. President Donald Trump has warned Iran of massive retaliation, saying that Tehran would pay many times. His warning came yesterday after three American soldiers killed recently, two in Jordan and one in Iraq. Ace Indian shuttler PV Sindhu is set to lead India at the China Open 2026 badminton tournament beginning today. Sindhu will face compatriot Unnati Hooda in an opening round of 32 clash of women's singles today. Devika Sehag will also compete in the women's singles draw. And that is the end of this news bulletin.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

शराब आप सुन रहे थे दिल्ली के अंदर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, और इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ बॉलीवुड के कुछ गॉसिप्स और अपडेट्स के साथ। जी हाँ, तो चलिए नजर रखते हैं गीतों से पहले आपके लिए बॉलीवुड की गॉसिप्स की ओर। दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा का मजेदार खुलासा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उनके हस्बैंड निक जोनस को बॉलीवुड की गॉसिप्स उनसे भी ज्यादा पता होती है। निक खुद बॉलीवुड गॉसिप पेजेस फॉलो करते हैं और रणवीर सिंह वर्सेस कार्तिक आर्यन। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह की जॉम्बी फिल्म प्राले को कंपटीशन मिल सकता है, क्योंकि कार्तिक आर्यन की जॉम्बी थ्रिलर उससे पहले रिलीज होने की प्लानिंग में है। अर्जुन कपूर डेटिंग र्यूमर्स, एक्ट्रेस साहिबा बाली के साथ अर्जुन कपूर की डेटिंग अफवाहें चल रही है। दोनों ने इस पर सीधी पुष्टि नहीं की और अर्जुन ने सोशल मीडिया पर संकेत दिया कि हर अफवाह पर यकीन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज को लेकर नए अपडेट्स आए हैं और फिल्म का नया पोस्टर भी सामने आया है। अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि उन्हें एक समय लगभग 10 साल तक फिल्मों के ऑफर्स नहीं मिले, जिस बात ने फैंस को हैरान कर दिया है। और दोस्तों, टॉप हेडलाइंस में है अजय देवगन की धमाल फौज। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और रिलीज के पहले हफ्ते में दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। आलिया भट्ट की अल्फा ने अपने पहले हफ्ते में लगभग 79 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। ये वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड फिल्म है। दोस्तों, सलमान खान की हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। उनके लेटेस्ट पब्लिक अपीयरेंस के बाद फैंस ने चिंता जताई, लेकिन वो अपनी आने वाली फिल्म मातृभूमि की तैयारी में लगे हुए हैं। और दोस्तों, कैटरीना कैफ ने हाल ही में अपना 43rd बर्थडे सेलिब्रेट किया और बॉलीवुड के कई स्टार्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर विशेस दी है। अब चलिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं नॉन स्टॉप फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म तेरे इश्क में। जी हाँ, और गीत के बोल है चिन्नावारे और इस गीत को आवाज दी है ए आर रहमान और शंकर महादेवन ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत तेरे इश्क में फिल्म से, और अब कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत फिल्म जॉस से। और गीत के बोल हैं मेरे ख्यालों की मलिका, और इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत लाइव इन अ मेट्रो फिल्म से पापा की आवाज में, और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत संजू राठौर के एल्बम से शेकी।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी गपशप यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। ये बैठक संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की एकता का प्रदर्शन करना है। इस दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी को सम्मानित करने के लिए एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी भेंट करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावेर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
3: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात, और प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: दोस्तों कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, और मैं हूँ आपके आज साथी दांपक। तो चलिए जिस देर बाद की और शुरू करते हैं कार्यक्रम और नजर रखते हैं पहली फरमाइश की ओर। इस वक्त हमें पहली फरमाइश आई है हमारे रेगुलर लिसनर से, टेंशन क्रो रोज मैरी जरोन बी सरलोई क्रो यानी क्रो फैमिली से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत प्यार किया है प्यार करेंगे फिल्म से। जी हाँ, और गीत के बोल है मीठी मीठी सर्दी है। और आपको बता दूं कि इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर ने। क्रो फैमिली जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी के नाम।

0: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और कार्यक्रम में अब चलिए फिर से नजर रखते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर। इस वक्त हमें रिक्वेस्ट आई हमारे रेगुलर लिस्नर हितेंद्र दास जी से, असम से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत पुलिस फिल्म का मैं जिस दिन बुला दो तेरा प्यार। हितेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगी कि आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट की है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मैं आपके लिए एक ऐसा गाना प्ले कर रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल और दिमाग खुल जाएगा। जी हाँ, तो पेश कर रहे हैं आपके लिए गीत मन फिल्म का, और इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में हमें रिक्वेस्ट आई है हमारे रेगुलर लिस्नर रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी।

जैसे जी हाँ, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है मिली फिल्म का गीत, गीत के बोल है मैंने कहा फूलों से, और इस गीत का आवाज दी है लता मंगेशकर ने, और ये गीत वो डेडिकेट करते हैं अपने दोस्त बाइकॉन अमल, विमल, देवशीष, हितेंद्र और जोगेंद्र जी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आप सबकी दोस्ती के नाम ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब हमें रिक्वेस्ट आई हमारे रेगुलर लिसनर हर्षित गोस्वामी जी से, बोगाघाट आसाम से जी हाँ, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है सैयारा फिल्म का गीत, और ये के बोल है तुम हो तो, और इस गीत को आवाज दी है विशाल मिश्रा, हंसिका पारिक और राजेश शेखर ने। हर्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में हमें रिक्वेस्ट आई है और चलिए नजर रखते हैं। हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है चाचा वांगशु जी से और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कोई आपसा फिल्म का गीत। गीत के बोल है तेरे दिल का रिश्ता और इस गीत को आवाज दी है हिमेश रेशमिया, समीर अंजान और सोनू निगम ने। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा वांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आपके रिक्वेस्ट पर ये गीत।

दोस्तों इसी गीत के साथ ही वक्त हो चला है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर और इसी के साथ ही समय हो चला है मेरे जाने का। लेकिन जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे नूरी जी। दोस्तों हमारे इस पहली प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता डी नियो। तब मुझे यानी अपना आरजे साथी दंपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। संसद भवन में आज आयोजित बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा हुई।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: श्री रिजिजू ने बताया कि मुक्त व्यापार समझौता किसानों के हित में है।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के लिए ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और संसद के अध्यक्ष अफ्रीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की संसद को संबोधित भी करेंगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग स्थित एचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने सभी संबंधित अधिकारियों को युद्धस्तर पर बचाव और राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात कर स्थिति और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़,

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़
2: तेरे दिल का मेरे दिल से।
3: नमस्कार श्रोता दोस्तों, अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के इस दोपहर की प्रसारण सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आपका सफर शुरू करें इससे पहले चलिए मिलकर धन्यवाद करते हैं आरजे दंपक का, जिन्होंने अपने सहज और खूबसूरत अंदाज में कार्यक्रम को संपन्न कर स्टूडियो की जिम्मेदारी अब हमें सौंप दी है। मैं हूं आपकी अपनी आरजे नूरी और मेरे साथ है प्रसारण अधिकारी गैर अत तथा तकनीकी संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे तकनीकी अभियंता AK सक्सेना। तो आइए इस सुहानी दोपहर का आगाज करते हैं मधुर संगीत के साथ। हमारी इस दोपहर की प्रसारण सभा का पहला संगीतमय पड़ाव है फिल्मी लहर। आज इस महफिल में होंगे प्यार भरी नोकझोंक, हल्की पुल्की छेड़छाड़, दिलकश मुस्कुराहटें और मोहब्बत के रंगों से सजे चुनिंदा सदाबहार और लोकप्रिय बॉलीवुड संगीत। तो तैयार हो जाइए मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के सुनने वालों, जहां हम आपसे करते हैं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से, क्योंकि अब बिखरेंगे सुरों के संग, महकेंगी मीठी यादें और संगीत का यह खुशनुमा सफर आपकी दोपहर को बना देगा और भी हसीन। जी हाँ, ये आकाशवाणी का अरुण FM और आपके साथ है, मैं हूँ आरजे नूरी और कार्यक्रम है फिल्मी लहर। दोस्तों, फिल्मी लहर जहाँ हमें हर संगीत कहीं न कहीं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समाधान पेश करता है। हर गीत ऐसा लगता है जैसे हमारी कहानी हो और हर गीत हमें ऐसे गुदगुदा जाता है जैसे हमारे साथ बहुत ही खुशनुमा मोहब्बत का माहौल चल रहा हो। चलिए शुरू करते हैं फिल्मी लहर इस खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोता दोस्तों कहते हैं प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने का नाम नहीं होता। कभी किसी की बातों में छुपी प्यारी सी शरारत, कभी रूठने मनाने का सिलसिला, तो कभी हल्की पुल्की नोकझोंक, यही छोटी छोटी बातें किसी भी रिश्ते को और भी खास बना देती है। और बॉलीवुड ने भी इन मीठे एहसासों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपने गीतों में पिरोया है। और आपने सुना ये पहला गीत फिल्मी लहर में, फिल्म आ गले लग जा से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की शरारती आवाज में। तो कभी दोस्तों कहते ना कि कभी नायक अपनी नायिका को छेड़ता है, तो कभी नायिका अपनी मासूम अदाओं से उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। कभी आंखों ही आंखों में शिकायतें होती है, तो कभी उन्हीं शिकायतों में छुपा होता है बेनतहा मोहब्बत। तो आज की फिल्मी लहर सजी है ऐसी ही प्यारी सी छेड़छाड़, दिलकश नोकझोंक और मोहब्बत की मीठी मुस्कानों से। अगर आपके चेहरे पर भी इस वक्त एक हल्की मुस्कान आ जाए या किसी अपने की याद दिल को छू जाए, तो समझिएगा कि हमारे आज के गीत अपना जादू बिखरने में कामयाब हो गया है। चलिए फिल्मी लहर में एक और प्यारा सा नोकझोंक भरा गीत।

जिंदा और जिंदा दिलंदाज देखने को मिलता है जो हर दौर में दिलों को छू जाता है। तो चलिए इस प्यारे से संगीत में सफर को आगे बढ़ाते हैं। पेश है एक और खूबसूरत बॉलीवुड गीत जो प्यार, मुस्कुराहट और मीठी यादों के रंग आपके दोपहर में घोल देगा।

तो मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, इन्हीं मुस्कुराहटों, प्यार भरी नोकझोंक और सुरीले बॉलीवुड गीतों के साथ फिल्मी लहर का ये खूबसूरत सफर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज के गीतों ने आपके दोपहर में प्यार, अपनापन और ढेर सारी मुस्कुराहटें घोल दी होंगी। लेकिन संगीत का यह कारवा अभी थमा नहीं है। अब वक्त है सुरों का रंग थोड़ा बदलने का, यानी कि बॉलीवुड की मधुर धुनों के बाद अब बारी है कुछ बेहतरीन अंग्रेजी गाने सुनने का। तो जुड़े रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, क्योंकि अब प्रस्तुत है वेस्टर्न मेलोडीज, जहां सुनेंगे लोकप्रिय और सदाबहार अंग्रेजी गाने जो आपके दोपहर को कर देंगे नया संगीत भरा अंदाज के साथ, आपके इस खूबसूरत सफर को और भी बेहतर बना देगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप अंग्रेजी गानों के प्रशंसक हैं तो दिस वन इज फॉर यू, बिकॉज कामसन तंगजंग हैज क्यूरेटेड वन of those beautiful songs for you in English. So Western Melodies is just waiting for you. तो ladies and gentlemen, यानी कि मेरे प्यारे श्रोता दोस्त, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के श्रोता दोस्तों, लीजिए आपका Western Melodies with कामसेन तंजंग।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन चोटडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई के भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलोर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी।

श्रोता दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आकाशवाणी के एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार, और कुछ पल पहले आप सुन रहे थे अंग्रेजी गाने। दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलेगी अंग्रेजी गाने, हिंदी गाने, गजल, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें, किस्से, कहानियां और दिल से दिल की बात। तो वक्त है आप सब तक पहुंचाने का कार्यक्रम गजल। गजल जो सिर्फ गाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए हम सुनते हैं। दोस्तों, हर शेर दिल के किसी कोने को छू जाता है। जब भी आप गजल सुनते हैं तो गजल का हर एक शेर दिल के किसी कोने को जरूर छू जाता है और हर लफ्ज किसी अधूरी याद को फिर से जिंदा कर देता है। ऐसा लगता है कि हर एक लफ्ज एकदम सोच समझ कर और दिल के हर कोने और हर इंसान के सोच को निचोड़ कर बनाया गया हो। तो दोस्तों, आज की इस महफिल को हम समर्पित कर रहे हैं सुरों की मलिका आशा भोसले को। फिल्मी गीतों में अपनी बहुमुखी गायकी का जादू बिखेरने वाली आशा जी ने नॉन फिल्मी गजलों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज की नजाकत, अदायगी और एहसास इन गजलों को अमर बना देते हैं। दोस्तों, इस संकलन में यानी कि मेराज एक गजल जो कि 1983 में आई थी, दिल पड़ोसी है 1957 और कशिश 1988 जैसी चर्चित प्रस्तुतियों की चुनिंदा गजलें शामिल हैं आज के संकलन में। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर की। रुदाद ए मोहब्बत क्या कहिए से,

श्रोता दोस्तों, रुद्दानी मोहब्बत क्या कहिए, एक बेहद खूबसूरत उर्दू शीर्षक है, यानी कि उर्दू गजल है। आइए इसके शब्दों का अर्थ समझते हैं। रुद्दान ए मतलब दास्तान, कहानी, बुरा हाल या घटना का विवरण। मोहब्बत मतलब प्यार, प्रेम या इश्क, और रुद्दान ए मोहब्बत प्रेम की कहानी, इश्क की दास्तान, मोहब्बत का बुरा हाल। क्या कहिए, क्या बयान करे, कैसे बयान करे, शब्द नहीं है। इसका मतलब हो गया कि मोहब्बत की दास्तान क्या बयान करे, इश्क का हाल शब्दों में कैसे कहें। प्रेम की कहानी इतनी गहरी है कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं।

वह क्या खूबसूरत तस्वीर है। दोस्तों, उर्दू शायरी में चांद हमेशा महबूब की खूबसूरती का आईना रहा है। जब इश्क अपने पूरे शबाब पर होता है तो चांद भी महबूब के हुस्न का रंग ओढ़े नजर आता है। यही तो गजल की खासियत है, साधारण बातों को भी खास एहसास में बदल देना। अब सुनते हैं एक ऐसी गजल जो हर मुश्किल घड़ी में उम्मीद का दामन थामे रहने का पैगाम देती है। उम्मीद होगी कोई,

जिंदगी में कुछ एहसास होते हैं जिनमें जिन्हें हम दुनिया से नहीं सिर्फ अपने दिल से साझा करते हैं। अनकही बातें, अधूरी ख्वाहिशें और खामोश जज्बात, यही तो गजल की रूह है। इन्हीं गहरे एहसासों को अपने अल्फाज में पिरोती अगली गजल जब आपके सामने है। हैरतों के सिलसिले सोज ए निहा तक आ गए, और इसी गजल के साथ ही कार्यक्रम गजल यही पे समाप्त होगा।

0: श्रोता दोस्तों, गजलों की दुनिया से अब निकलकर आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम आज का मेहमान की ओर। घड़ी के अनुसार इस वक्त 12:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम पेश कर रहे हैं आज का मेहमान कार्यक्रम। आइए चलिए जानते हैं कि आज का मेहमान कौन है। आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर
1: आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमसे बातें कर रही हैं अरुणाचल प्रदेश की लोकप्रिय गायिकाओं में से एक मारपी बाम, जिनकी आवाज में लोक संस्कृति की गहराई और आधुनिकता की चमक साथ साथ झिलमिलाती है। उन्होंने राष्ट्रीय मंच भारत का अमृत कलश पर गालो और आपातानी लोकगीतों का सुंदर संगम प्रस्तुत कर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों को भी छुआ। उनका लोकप्रिय गीत मुगो मोगो गालो संस्कृति परंपरा और पूर्वजों की

0: शक्ति को समर्पित है। तो आइए मिलते हैं आज की हमारी मेहमान मार्फी बाम से। मार्फी बाम, तो आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बचपन के बारे में, ये किस तरह से बीता?
1: बचपन मेरा मम्मी पापा के साथ ज्यादा मेरा समय बीता नहीं है। मेरे मौसी ने मुझे पाला पोसा है, मम्मी का जो दीदी है, बड़ी दीदी है, उसने मुझे पाला पोसा। तो आलो में था उनका जॉब, तो उनके साथ रहा मैं बचपन का। चाइल्डहुड स्कूलिंग भी वहीं पे हुआ। उसके बाद फिर बाम, फिर बाम से बासर, ऐसा करके बासर आते आते ईटानगर आते आते बड़ी हो गई।
0: जी जी, आपका जो तो संगीत से जुड़ाव कैसे हुआ?
1: बचपन से ही मेरा घर में ऐसा माहौल रहा कि मेरा घर में ज्यादातर लोग म्यूजिक लवर है। okay. तो बचपन से ही मम्मी पापा चाचा चाची सारे लोग हमारा ओल्ड मेलोडीज म्यूजिक सुन सुन के आए हैं, तो हम भी वो सुन सुन के, मतलब ऐसा हमारा इच्छा रहता था कि हमें भी बड़ा होके सिंगर बनना है ऐसा।
0: तो आपको कुछ याद है कि जब आप छोटी थी तो आपने कहा कि आपका जो घर का माहौल है बड़ा संगीतमय हुआ करता था, तो कुछ याद है कि आपने कौन से गीत को गुनगुनाया?
1: ऐसे तो मुझे इतना अच्छा से याद नहीं है, पर घर का जो बड़ा बुआ लोग चाचा लोग जो होता है वो मुझे हमेशा छेड़ते रहता है कि बचपन में मेरा सबसे पहला गाना है रुला के गया सपना, वो था। वो अभी तक कहानी सुना के मुझे छेड़ते हैं कि रुला के गया का मीनिंग भी तुम्हें पता नहीं था होगा, फिर भी तुम वो गा के रोया करता था ऐसा। तो अभी भी छेड़ता रहता है मुझे उस गाने
0: जी,
1: की।
0: तो हम चाहेंगे दो लाइन कुछ गुनगुना दे तो।

0: बहुत खूब बहुत खूब। तो जिस तरह से आपने गाया बहुत ही सुंदर है। आप ये जानना चाहते कि जैसे अभी आपने कहा कि आपके परिवार वाले भी आपको छेड़ते थे कि जब आपको इस गीत का मीनिंग भी मालूम नहीं था तो आप रोया करते थे। अब थोड़ी बड़ी हुई तो आपको जब गाने का मौका मिला तो आपने सबसे पहले स्टेज में कौन सा गाना गाया?
1: पहला स्टेज तो हमारा ये गांव में जो कुछ प्लेज वीक वगैरह कुछ स्कूल का टूर्नामेंट वगैरह होता है तो उसमें सोलो सॉन्ग कंपटीशन वगैरह रहता था हमारा। तो सबसे पहला स्टेज तो मेरा वही था। तो सोलो सॉन्ग कंपटीशन वगैरह हिंदी राउंड होता है फिर अपना लोकल राउंड होता है तो वही मेरा पहला स्टेज था प्लेज वीक वाला।
0: जब हम मारपी बाम की बात करते हैं तो मारपी बाम को लोग गालो सिंगर के तौर पर पहचानते हैं तो आपको कुछ कहना है इस बारे में?
1: गालो सिंगर बोलो या अरुणाचल का सिंगर बोलो मेरे लिए तो ये दोनों खुशी की बात है क्योंकि गालो सिंगर बोलना सही है क्योंकि मैंने ज्यादातर गाना मैंने गालो में ही बनाया ये अच्छा बात है मेरे लिए खुशी की बात है।
0: आजकल के जो युवा होते हैं और ज्यादातर देखते हैं कि म्यूजिक का उनका जो चॉइस होता है उनका जो टेस्ट रहता है कहते हैं कि पॉप या वेस्टर्न म्यूजिक की ओर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रहते हैं लेकिन आपने गालो को चुना ये कुछ इंटेंडेड डिसीजन था?
1: गालो को चुनना तो एक डिसीजन बोल के भी नहीं है। मैं गालो हूँ तो मैं गालो में लिख सकती हूँ पहला गाना भी गालो में ही सुनते आई हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मैं लिख सकती हूँ। जब मैं लिखती हूँ तो मुझे गालो लैंग्वेज डायलेक्ट पता है तो मैं उसको फील करके लिख सकती हूँ।
0: तो जब लिखने की बात आती है तो कितना चैलेंजिंग है कि अपने मदर टंग में लिखना अपने गालो डायलेक्ट में लिखना?
1: इसमें एक्चुअली ऐसा है कि पहले का जो हम सीनियर सिंगर्स का जो हम गाना सुनते आए हैं तो उसमें बहुत कुछ कुछ वर्ड्स होता है जिनको हम बोलते हैं गा लेते हैं फिर भी कुछ कुछ वर्ड्स ऐसा होता है कि हम उसको समझते भी नहीं है। तो मैं जो लिखती हूँ मैं तो बहुत सिंपल लिखने की कोशिश करती हूँ और सिंपल ही मुझे पता है तो मैं सिंपल लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि आजकल का जो यूथ है बहुत सारे लोगों को तो अपना डायलेक्ट बोलना भी नहीं आता अपना लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से बोलना भी नहीं आता तो वो भी क्या होता है कि सिंपल लैंग्वेज में आप गाना बनाओ तो वो लोग भी समझते हैं इसीलिए मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ।
0: जी आपने जो गाना लिखा है कुछ जो लिखा है उसमें से कुछ एक गाना गुनगुना दीजिए।
1: कुछ रिसेंट गाना जो एक बहुत इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में लड़कियों ने काफी पसंद किया था उस गाने को नमो मिला मिला करके तो ये मेरा भी बहुत दिल का करीब एक गाना है। इसमें एक है कि सेकंड वर्स जो है इसको लोगों ने बहुत पसंद किया तो मेरा गाना का टाइटल है नमो मिला तो मैं वही लाइन सुनाना चाहूंगी।

0: बहुत खूब। कहते ना कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। जब आप गीत को बनाती, गीत को लिखती हैं, सीनियर्स को शायद दिखाती होंगी या बोलती होंगी, तो कुछ वो भी एडवाइसेस सजेशंस क्या देते हैं जो एकदम जस्ट गालो लैंग्वेज या गालो डायलेक्ट बोलते हैं?
1: जब भी मैं गाना लिखती हूँ, अपने सीनियर्स जो भी है, अच्छा लिरिसिस्ट हमारे गालों में बहुत सारा अच्छा अच्छा लिरिसिस्ट है, मैं सबसे पहले तो रोकम बादो सर को, हेंकर रोकम बादो करके हमारा एक बहुत मशहूर लिरिसिस्ट एक है गालो समाज में, तो मैं हमेशा उनको भेजती हूँ, सर आप एक बार चेक कर दीजिए, क्रॉस चेक कर दीजिए, अगर कुछ लाइन्स में आप चेंजेस करना चाहो तो मुझे आइडिया दीजिएगा ऐसा।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए जो आपको मेंटरिंग करते, जब आजकल के जमाने में जब आप गालो गाना लिखने बैठती है तो पुराने जमाने के जो लिरिसिस्ट बहुत ही जस्ट गालो वर्ड्स यूज करते थे। मार्फी बाम जो है गालो सिंगर है अरुणाचल प्रदेश के, आजकल देखते हैं कि जो गालो के पुराने सॉन्ग्स हुआ करते थे उसे रिक्रिएट किया जा रहा है, तो आपके हिसाब से क्या ये करना सही है या नहीं है?
1: ये मैं तो खुद भी करना चाहती हूँ, बहुत सारा गाना ऐसे है कि पहले रेडियो जमाना में जो गाना होता था और कैसेट के जमाने में जो टेप कैसेट जमाने के जो सॉन्ग्स है, तो वो लोग क्या होता है कि बहुत सारा सॉन्ग्स इतना अच्छा मेलोडी है उनका, इतना अच्छा धुन है, सुन के ऐसा होता है कि हम बचपन से वो सुनते आए हैं, तो हम इन दिनों बड़ा होते होते हमें भी ऐसा लगता है कि अगर इस गाने में अभी नया म्यूजिक के साथ ये बने, यूट्यूब वगैरह में अपलोड हो, ऐसा होता है कि अभी नया बना के हम जो यूट्यूब वगैरह में डालेंगे उसका क्वालिटी तो गिरने का चांसेस बहुत कम है ना, और वो गायब होने का उसका चांसेस भी बहुत कम है। पहले जो होता था टेप कैसेट वगैरह का, जो रेडियो वगैरह का जो सॉन्ग होता था उसमें, उसको इन दिनों कन्वर्ट करके MP3 वगैरह जरूर बनाता है पर क्वालिटी गिर जाता है, तो वो हम लोग सुन के ऐसा फील करता है कि हम आर्टिस्ट लोग सुन के, सिंगर्स लोग, ऐसा लगता है कि इसका म्यूजिक बिगड़ गया कन्वर्ट करके, तो इसको हम एक नया म्यूजिक दे सकते हैं। पता नहीं दूसरा सिंगर्स का कैसा होता होगा, पर मेरा ऐसा बहुत सॉन्ग्स है लिस्ट में जो इसमें अगर नया इन दिनों कुछ नया म्यूजिक आए, इसका म्यूजिक क्लियर हो, वोकल भी क्लियर हो, तो कितना अच्छा होगा ये, ऐसा बहुत है मेरे लिस्ट में।
0: उस लिस्ट में से कुछ एक गाना जो गा सकें?
1: लिस्ट में से तो गाना बहुत है, पर जैसे कि हमारा लेतोई का तो मैम का जो गाना वगैरह जो मैंने सुना है कि वो रेडियो वाला सॉन्ग है, वो कैसेट वगैरह में रिकॉर्ड भी नहीं हुआ वो, तो उनका गाना जो है तो वो मैं फिर से बनाना चाहती हूँ, मैं बहुत साल से सोच रही हूँ, मैंने परमिशन भी मांग रखा है पर अभी तक हो नहीं पाया कुछ। उनका गाना 2-3 गाना बहुत अच्छा है, तो उसमें से

0: गोला। ये एक बहुत प्यारा गाना है, तो मैं इसे वापस फिर से बनाने का मुझे मौका मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा।
1: जी, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो गाने बनते हैं वो YouTube में डालते हैं, व्यूज भी अच्छा आ जाता है, क्वालिटी की बात कहें तो क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। आजकल जो आर्ट

0: आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, या वो कोई राइटर ही क्यों ना हो, आजकल कुछ भी लोग करते हैं यूट्यूब पे डालते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब में डालना, अपलोड करना कितना चैलेंजिंग है और कितना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है?
1: यूट्यूब का बात करें तो इसमें दोनों ही चीजें जो आपने बोला, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी भी है
0: जी
1: और फिर आप चैलेंजिंग पार्ट ये है कि अगर आपको कुछ अपना ओरिजिनल्स बनाना है, प्रॉपर गाना और वीडियो, ये दोनों अगर आपको करना है तो इसमें बहुत चैलेंजिंग है। एक तो खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाता है ऑडियो और वीडियो में, तो इतना मेहनत करने के बाद हमारा भी एक खौफ होता है कि उम्मीद होता है कि हम ऐसे अच्छा अच्छा हमने बहुत किया, इसमें बहुत मेहनत किया तो हम इसे यूट्यूब में अपलोड करेंगे तो हमें अच्छा व्यूज मिलेगा तो लोगों को पसंद आएगा। ऐसा ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट ही होता है कि
0: जी
1: हम हमारा मेहनत और जो हमारा टाइम एनर्जी जो भी लगा, हमें जो अच्छा लगा वो लोगों को अच्छा नहीं भी लगता है, उसमें बहुत चैलेंजिंग है।
0: लॉस होने का चांसेस भी रहते
1: हाँ,
0: हैं।
1: लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहता है
0: जी
1: जब आप
0: जी
1: अपने ओरिजिनल्स वगैरह में काम करो तो।
0: जी अरुणाचल प्रदेश के जब म्यूजिक की बात करें, तो वीडियो एल्बम्स की बात करें, तो जो यूट्यूब में अपलोड हुए हैं, व्यूज भी मैटर करते हैं। उनमें से मारपी बाम भी एक ऐसी सिंगर है जिनके बहुत ज्यादा व्यूवर्स मिला है, तो इसमें क्या कहेंगे?
1: हाँ, मेरा एक दो गाना है जिसमें मिलियन व्यूज कमाया। तो शुरुआत ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि हम ऐसा ही ऑडियो बनाते रहना हमारा भी अभी ये भी आउटडेटेड हो गया, वीडियो वगैरह भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर ऐसे वीडियो गाना बनाने के बाद में वीडियो करने के लिए फिर किसी को हायर करना, तो कोई एक्टर को हायर करना, तो इतना बजट हमारे पास रहता नहीं है, तो इसीलिए ऐसा खुद इन्वॉल्व हो गया, चलो खुद कर लेते हैं, ऐसा एक दिन का इंटरेस्ट है, ऐसे भी नहीं है। मेन बात तो बजट इशू, किसी को हम हायर नहीं कर सकते ना उस समय, तो और भी नहीं कर सकते थे, तो उसी से ऐसा हुआ कि चलो खुद कर लेते हैं ऐसा। तो लकीली हमने जो एक मोपिन सॉन्ग बनाया था काजू काजू करके, वो वीडियो उस समय तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था यूट्यूब
0: जी
1: चैनल वगैरह कैसे खोलना होता है, कुछ आइडिया भी नहीं था। तो उस समय में ताई गुंगते भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरा एक ऐसा ऐसा गाना है तो चलो ना वीडियो करके देखते हैं, तो उसने बहुत सपोर्ट किया, मान लो उसने फ्री में ही कर दिया। इसीलिए आज भी मेरे वेल विशर्स जो भी सपोर्ट करने वाले जो लिस्ट में होते हैं उनका नाम भी हमेशा टॉप में ही होगा। उसने मुझे बोला कि चलो तुम लोग अगर ये वीडियो वगैरह ये सब स्टार्ट करने का तुम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, ये करना चाहिए, तो करके ऐसे उसने एनकरेज किया, मुझे वीडियो बना दिया। पर उसने उस समय मेरा तो यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो उसने अपना चैनल में अपलोड किया।
0: जी
1: उस समय हमारे लिए बहुत बड़ा बात था कि मिलियन व्यूज हो, मिलियन क्या 1 लाख व्यूज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा था।
0: जी
1: तो जब कुछ ही महीने में, एक दो महीने में 1 लाख व्यूज हुआ, तब हमारा मतलब हिम्मत और बढ़ गया कि
0: जी
1: और वीडियो बनाना चाहिए, अपने चैनल में भी डालना चाहिए,
0: जी
1: ऐसा करके उसके बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। तो अपना चैनल स्टार्ट करने के बाद मैंने कुछ गालो सॉन्ग्स वगैरह बनाया, फिर उसमें नॉर्मल व्यूज वगैरह रहा। उसके बाद मेरा चैनल में मैंने एक आधी गाना बनाया था
0: जी
1: मैंने, तो वो मेरा चैनल में वो सबसे पहले मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला है, वो सोलूं गाना ही।
0: जब वायरल वीडियोस की बात करते हैं, वायरल सॉन्ग की बात करते हैं, तो मारपी बाम को एक सॉन्ग के लिए भी जाना जाता है जिसका टाइटल शायद गाले छे गिर कुछ इस तरह का। ये गाना किस तरह से बना?
1: एक्चुअली ये गालो चगियर, ये एक हमारा एक गालो एल्बम था,
0: जी
1: तो उसमें ये गालो चगियर गाना मेरा उस एल्बम में था। ये मेरा पहला एल्बम था,
0: ओके
1: 2017 हाँ 2017 में हम लोग ने फ्रेंड्स ग्रुप जो हमारा सिंगर फ्रेंड्स ग्रुप जो होता है, हमने डिस्कस किया कि हम लोग मिलके खुद मिलके एक एल्बम बनाते हैं जिसमें सबका दो दो गाना होगा करके।
0: जी
1: तो हम चार पांच लोग थे, तो हम सब ने अपना दो दो गाना रेडी किया, तो दो दो गाना बनाया, तो उसमें से उस दो गाने में मेरा दूसरा गाना था गाला चगियार। तो ये गाला चगियार एक्चुअली एक नेपाली सॉन्ग से इंस्पायर्ड होके मैंने बनाया।
0: जी
1: तो
0: जी
1: मेरा चाची नेपाली है, तो वो हमेशा बोलते रहता था कि इस टाइप का गाना, इस टाइप का लिरिक्स तुम्हारे पास कुछ है क्या, इस टाइप का कुछ बनाओ ना, ये बहुत अच्छा गाना है करके एक नेपाली सॉन्ग का उसने मुझे धुन सुनाया और कुछ कुछ उसने मुझे मीनिंग भी बताया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इस टाइप का गाना तो मैं भी बनाना चाहती थी, तो इस टाइप का कुछ बनाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लड़कियों के बारे में है ये गाना ऐसा। तो उसी से नेपाली सॉन्ग से ही इंस्पायर्ड होके मैंने ये गाना।
0: तो हम चाहेंगे कि ये जो सॉन्ग है ये बहुत ही पॉपुलर भी हुआ है, तो ये गाना कुछ गुनगुना दें।
1: गलत

0: जी बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। और एक गालो सॉन्ग है मारपी बाम का, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ और टाइटल है मुगो मुगो। हम ये जानना चाहते हैं ये इस सॉन्ग को किस तरह से बनाया आप लोगों ने, कंसेप्ट किस तरह से क्रिएट किया?
1: मुगो मुगो ऐसा था कि कुछ समय ऐसा हो गया कि लव सॉन्ग्स मैंने बहुत सारा
0: जी
1: बनाया, सेहत सॉन्ग्स भी मैंने बनाया और पार्टी सॉन्ग्स भी मैंने बनाया, दो तीन जो भी होता बहुत सारा गाना, डांस नंबर्स, लव सॉन्ग, सेहत सॉन्ग जितना भी बनाया। अब स्पेशली अपना गालो साइटी तो उन लोगों ने बहुत ही प्यार दिया सबको, ज्यादातर मेरा गाना अच्छा ही लगा। तो फिर कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सब गाना तो मैंने बहुत बना लिया, तो अभी मुझे कुछ ऐसा अपना एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एक अपना कल्चर के बारे में, अपना एक ट्रेडिशनल फोक टच वाला एक गाना बनाने का मन था। वही मैं रिसर्च कर रही थी कि किसको बोलूं मैं। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भी है कि इस टाइप का मुझे गाना चाहिए, तो आप ट्राई कर दो करके। उसी दौरान मम्मी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया, तो मुझे बोला कि पापी ये सुन के देखो, पहले जमाने में हम लोग इसको गाता था, आधा लोग जब गाता था तो आधा लोग डांस करता था, तो
0: ओके
1: उस गाने का गाना है ये, बहुत ही अच्छा गाना है, तुम इसको ट्राई कर सकता है करके। तो मैंने सुना उसका रिकॉर्डिंग, तो मुझे अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसी पे काम करते हैं करके। तो उस गाने में एक्चुअली बहुत, वो गाना बहुत एक चैलेंजिंग गाना
0: जी
1: था, उसमें बहुत अलग अलग वेरिएशन है। तो ज्यादातर गाना ऐसा होता है ना कि आप स्टार्ट करो तो एंड तक मतलब एक सेम वेरिएशन में रहता है
0: जी
1: वो।
0: जी
1: तो इस गाने में ऐसा है कि आपको लगता है कि आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि तीन चार गाना एक साथ कट करके जोड़ दिया जैसा, फिर भी मुझे लगा कि नहीं करना है, क्या पता लोगों को अच्छा भी लग सकता
0: जी
1: है
0: जी
1: ऐसा। उसके बाद मैंने गाना रेडी किया, गाना रेडी करने के बाद में फिर गाना जब रेडी हो गया, म्यूजिक वगैरह भी बहुत अच्छा देने का कोशिश किया इसमें, गाना में बहुत खर्चा भी हुआ इसमें।
0: जी जी
1: उसके बाद फिर गाना रेडी होने के बाद में गुरु केन को दिया मैंने, मैं ऐसे ऐसे कुछ करना चाहती हूँ करके। तो मैंने जो उनको हाईलाइट किया, इस तरह से मैं करना चाहती हूँ, उसने उसी तरह से कॉन्सेप्ट रेडी किया, उसी तरह से कॉन्सेप्ट रेडी किया अपना आइडियाज भी डाल के। उसके बाद हमने बहुत ही मेहनत से उस वीडियो को बनाया गांव में जाके, बासर के एक गांव में जाके। तो बहुत चैलेंजिंग था ये
0: जी
1: हमारे लिए। फिर दुख की बात ये है कि इस तरह का गाने का ऑडियंस हमारे यहाँ पे शायद बहुत कम है। तो मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत क्वालिटी का म्यूजिक बनाया और क्वालिटी का वीडियो बनाने का कोशिश भी किया, कुछ
0: जी
1: नया करने का कोशिश किया।
0: जी
1: इस टाइप का जो गाना हम कोशिश कर रहे
0: जी
1: हैं इन
0: जी
1: दिनों, इन सब का भी धीरे धीरे लोगों का देखने का नजरिया बदलेगा, तो
0: जी
1: धीरे धीरे ये सब भी चलेगा।
0: अब बात करते हैं रियलिटी शो के। आपने एक रियलिटी शो में भाग लिया था जिसका नाम है भारत का अमृत कलश। इसका जो एक्सपीरियंस रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का, कुछ शेयर करेंगे?
1: भारत का अमृत कलश का जो एक्सपीरियंस है, ये मेरा मतलब लाइफ का, मेरे लिए ये बहुत एक खुशी की बात है कि भारत का अमृत कलश एक्चुअली अ फोक रियलिटी शो था।
0: जी
1: तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें। हम चलो इंडियन आइडल सारेगामा तो मैं नहीं जा पाई, फिर भी इस फोक सॉन्ग के जरिए मैं मुंबई गई और इंडिया के सारे स्टेट के लोगों से मिलना हुआ, अच्छे से जानने का मौका मिला कि कौन से स्टेट का गाना किस तरह से होता है। ये तो लाइफ का एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस मेरे
0: जी
1: लिए।
0: ये जो शो था फोक म्यूजिक बेस्ड शो था, तो जो दूसरे स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों से कुछ सीखने को मिला?
1: दूसरे स्टेट के पार्टिसिपेंट से मुझे ये सीखने को मिला कि दूसरा स्टेट जो है, ज्यादातर सब नहीं पर ज्यादातर स्टेट क्या है, अभी तक अपना फोक सॉन्ग, अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग्स इसमें ही है। उनका जो भी हो, लव सॉन्ग्स हो, पार्टी सॉन्ग्स हो, जो भी हो, सारा उनका फोक सॉन्ग्स ही होता है। वो अभी तक अपना फोक सॉन्ग को ही लेकर चल रहा है। तो उनमें और हम में ये अलग है कि उनमें और हमारा अरुणाचली जो भी है, उसमें और हम में अलग ये देखने को मिला कि हमारा अरुणाचल जो है वेस्टर्न सॉन्ग्स पे फोकस कर रहे हैं।
0: जी
1: मॉडर्न सॉन्ग्स बोले तो कुछ

0: रैप वगैरह, लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड से इंस्पायर्ड, ऐसा कुछ चल रहा है हमारे यहाँ पे। उसके बाद में उनका बाकी स्टेट का, दूसरा स्टेट का ये अलग है कि वो अभी तक अपना फोक सॉन्ग्स को ही लेकर चल रहे हैं ज्यादातर स्टेट, तो उन लोगों का प्लस पॉइंट हो जाता है। उन्होंने अपने फोक सॉन्ग्स पे बहुत काम किया, जितना हमने नहीं किया। हमारा तो जितना पहले हम बचपन में सुनते थे हमारा उतना तक ही है, तो जितना सुनता था अभी भी हमारा उतना ही है, इसमें हमने ज्यादा काम नहीं किया। पर बाकी स्टेट ने अपने फोक सॉन्ग्स को, अपने फोक सॉन्ग्स के ऊपर में बहुत काम किया, तो उनके पास में बहुत सारा फोक सॉन्ग्स का वेराइटीज है। तो इधर उधर आपको कहीं परफॉर्म करने का मौका मिले और कुछ रियलिटी शोज वगैरह, जैसे कि भारत का अमृत कलश, तो इसमें आपके पास में दिखाने को बहुत है और हमारे पास दिखाने को बहुत कम है। तो माइनस पॉइंट वही था और उनसे मैंने जो सीखा वही था कि अपना ट्रेडिशनल, अपना फोक को हमें बरकरार रखना चाहिए। इसमें हम क्या और सुधार ला सकते हैं, इसमें हम क्या प्लस करके इसको सुंदर कर सकते हैं, उसमें ध्यान देना चाहिए, मैंने वो सीखा।
1: आप सिर्फ गालो सॉन्ग ही नहीं गाते, जिसे मैंने एक कवर सॉन्ग देखा था असमिस में गाए, आप हिंदी भी गाते हैं।
0: एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा आप क्या पसंद करते हो, क्या गाना पसंद करते हो, ये अगर मुझसे पूछोगे तो मैं हिंदी ही बोलूंगी। तो मुझे हिंदी गाना बहुत पसंद है, हिंदी गाना सुनना पसंद है, गाना पसंद है, तो मेरा फेवरेट तो हिंदी ही रहेगा। पर मैं अरुणाचल में रहती हूँ, मैं अरुणाचली हूँ, तो मैं यही रहती हूँ, तो मुझे अपना गाना भी बनाना है और मैं गालो लिख सकती हूँ, तो ज्यादातर तो वही बनता है। तो पर मेरा, मुझे पूछेगा तो सुनने वालों को बुरा भी लग सकता है, पर मुझे अपना गाना से भी ज्यादा मुझे हिंदी गाना सुनना पसंद है, हिंदी गाना गाना पसंद।
1: जी, आपका हिंदी में फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे?
0: हिंदी में तो बोले तो फेवरेट सॉन्ग तो मैं ज्यादातर ऑल मेलोडी सॉन्ग सुनती हूँ, तो ऑल मेलोडी सॉन्ग्स बचपन से, मैंने पहले भी कहा कि माहौल ही वही रहा कि मेरा, हमारा घर में लता मंगेशकर का गाना बजता है, मोहम्मद रफी का गाना बजता है, तो उसी माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ, तो मुझे ओल्ड मेलोडी सॉन्ग सारा, ज्यादातर ओल्ड मेलोडी सॉन्ग तो सारा मेरा फेवरेट ही है।
1: जी, उनमें से कुछ आप गुनगुना दीजिए।

0: इतना तक ही। आज बहुत ड्राई खप भी है तो मैं गाना गा ही नहीं पा रही हूँ, सो सॉरी।
1: बहुत ही सुंदर गीत है। जहाँ तक मुझे मालूम है ये फिल्म ममता का है और धुन बनाया है रोशन ने। और
0: तो इतना डिटेल्स तो मुझे पता ही नहीं।
1: जब हम कोई सेलिब्रिटीज की बात करते हैं तो वो अपना एक पीआर रखता है, तो आप किस तरह से अपना पीआर करती है?
0: पहले तो हमें पीआर वगैरह के बारे में तो कुछ आइडिया भी नहीं था, और हमारा यहाँ अरुणाचल में सारा आर्टिस्ट लोग है खुद को खुद ही मैनेज करता है, तो कोई पीआर टीम कोई मैनेजर वगैरह रखने का तो ऐसा ट्रेंड तो हमारे यहाँ अभी इन दिनों ही आया है। तो इन दिनों हमारे यहाँ अभी मुझे मैनेज अभी आन एंटरटेनमेंट करता है, तो मुझे भी लगा कि खुद कब तक आप बात करते रहेंगे, खुद कब तक डील करते रहेंगे, तो कभी कभी बहुत ऑकवर्ड फील भी होता है कि अपना फीस खुद बताओ फिर बर्गेनिंग करो खुद से, तो ये सब कभी कभी बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आन एंटरटेनमेंट ने अप्रोच किया तो मुझे सही लगा, हाँ हमें करना चाहिए ये ऐसा प्रैक्टिस हमें करना चाहिए, और लोगों को भी ऐसा प्रैक्टिस करवाना चाहिए, जानने देना चाहिए कि इस तरह होता है प्रॉपर वे में।
1: तो आने वाले सिंगर्स को क्या कहना चाहेंगे?
0: आने वाले जो सिंगर्स है, जैसे कि हमारा बचपन जैसे रहा, पहले तो हमें कुछ सारे गामा तो हम बस टीवी में देखते थे ना, सारे गामा वो जो रियलिटी शो उसमें सिर्फ हम सारे गामा देखते थे। तो फिर हमें बड़ा होके हम जब यहाँ ईटानगर में हमारा जब शुरू हुआ ईटानगर वगैरह आके, तो तभी हमें पता चला कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपका गला अच्छा बनाने के लिए, आपको मतलब आप एक अच्छा सिंगर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस रियाज का बहुत जरूरी है। तो पहले तो हमारा पहले वो जमाना नहीं था, हम जहाँ बड़े हुए हैं तो वहाँ रियाज वर्ड तो हम बहुत अभी रिसेंटली सुना ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मैं आने वाले सिंगर्स जो भी है जो इंटरेस्टेड है सिंगर बनना चाहता है जो, तो मैं उसको वही बोलूंगी कि विदाउट प्रैक्टिस कुछ होने वाला नहीं है, हो सकता है कुछ एक दो वक्त तक चल सकता है पर लॉन्ग टर्म तक वो नहीं चल सकता विदाउट प्रैक्टिस। तो हमारा तो समय चला गया वो सीखने, अभी भी सीख सकते हैं, अभी हम सीख ही रहे हैं पर लेट हो गया ना, ये सब तो बाहर वाले बचपन से करते हैं, वो जो बचपन से करते हैं वो हम अभी से शुरू कर रहे हैं, तो ये बहुत लेट है। तो मैं अपकमिंग सिंगर्स जो भी बनना चाहते हैं उनको वही सजेस्ट करूंगी कि आपका तो लेट नहीं हुआ, आप अभी से आज से रियाज क्या होता है वो सब रिसर्च कर ले सिंगर बनना चाहते हो तो।
1: तो हम कार्यक्रम के समापन पर आने को है, तो इससे पहले हम चाहते कि एक और कुछ आपका कोई दिल के करीब का कुछ गीत हो वो गुनगुना दीजिए।

0: तो अंत में अब ये जानना चाहते हैं कि हमारे सुनने वालों को या तो आपके फॉलोवर्स को, आपके सपोर्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं अपने सपोर्टर्स और मेरा थोड़ा बहुत जितना भी फॉलोअर्स है, मैं उनसे वही कहना चाहूंगी कि हमें सपोर्ट करते रहें। और हमने भी अभी गाना को प्रॉपर तरीके से जानना शुरू किया है, तो हम कुछ नया कोशिश करते हैं तब भी हमें सपोर्ट करें। सेम जो हमारा पुराना स्टाइल जो था उसमें जैसे सपोर्ट करते आए हैं, तो हम जब नया कुछ ट्राई करते हैं तब भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक ही स्टाइल में तो हम नहीं रह सकते, हमें भी सीखना जरूरी है। तो हम जो भी नया कुछ ट्राई करते हैं सपोर्ट करना, और कमेंट तो कर ही सकते हैं कि
0: जी
1: अगर कुछ करेक्शन करना हो तो कमेंट सेक्शन तो हमेशा खुला रहता है, तो वहाँ पे हमें एडवाइस दीजिएगा।
0: आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में तथा अपने म्यूजिकल जर्नी के बारे में इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
0: ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। अभी आप सुन रहे थे हमारा वीकली इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। और आज की कड़ी में आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश की लोकप्रिय गायिकाओं में से एक मारपी बाम को।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की, जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
3: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए

0: कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोफ को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एसएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वर्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, also known as Mangal Milan, at Parliament House Complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi said all those involved in the paper leak case have been arrested, with 13 accused currently lodged in jail.
3: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
4: As soon as reports of paper leak emerged

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
2: जी हाँ दोस्तों, बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज के सफर में मैं हूँ आप सबके साथ आरजे नूरी। और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के बाद आपको लिए चलने का वक्त हो चला है कार्यक्रम की ओर, हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s to 80s। जी हाँ, आज हम सुनेंगे बैक टू बैक 1960s, 70s और 80s के कुछ हसीन नगमे। लीजिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

लगेगा। जब हम सब बड़े हो जाएंगे तो देखा करेंगे। पिताजी, माँ, कमल,

बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी

मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आज आपने सुना 1960s, 70s और 80s के हसीन नगमे मेरे बिना रोके टोके। मुझे अच्छा लगता है कि हर गीत के मकसद और उसके इमोशंस और हर शब्द के बारे में, हर लफ्ज के बारे में आपके साथ बातें करूं, लेकिन कभी कभी हमारे श्रोता बुरा मान जाते हैं और कहते हैं कि कितना बात करती हो यार, इतने सुंदर गाने हैं, हमें बैक टू बैक सुना दिया कीजिए। बस आप बता दीजिए कि वो कौन से कार्यक्रम के या सेगमेंट में आप सुना रहे हो। बस हमारे लिए, हमारे श्रोता दोस्तों के ख्वाहिशें और उनके फरमाइश आदेश के समान है और हम मान भी लेंगे। आज जब हमारे श्रोता कहते हैं कि बीच बीच में आप टोका मत कीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, लीजिए सुनिए 1980s, 60s और 70s के हसीन नगमे बैक टू बैक। और मैंने वही किया और हमारे श्रोता बहुत खुश होंगे, क्योंकि जो गाने 1960s, 70s और 80s के बने होते थे वो दिल को सुकून दे जाते थे, और आज भी ऐसा ही लगता है कि जैसे ये गाने हमारे लिए बनी हो। तो दोस्तों, आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं आज आपके साथ आरजे नूरी, और 1960s, 70s और 80s का यह नगमों का सफर यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन गीत गानों का सफर अभी जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। अब लीजिए नए धुनों से सजा हिंदी फिल्मी गानों का सफर आप सबके नाम।

0: तो दोस्तों, हिंदी फिल्मों की इस नए धुनों को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन हम फिर से हाजिर होंगे ठीक 2:30 पर हिट्स ऑफ 90s के साथ। लेकिन इससे पहले मिडडे न्यूज तथा दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित, बने रहे आकाशवाणी के रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations. Reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namchi district. Rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And India summons Russian envoy over death of 4 Indian nationals following attack on a commercial vessel. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now known as Mangal Milan, was held at the GMC Balayogi Auditorium in Parliament House today. During the meeting, NDA Alliance partners passed a congratulatory motion honouring Prime Minister Narendra Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. He said, Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said all those involved in the recent NEET paper leak case have been arrested, with 13 accused currently lodged in jail.
2: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
2: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है।
1: Mr. Rijiju said Prime Minister Modi also spoke about the free trade agreements that India has signed with several countries. During the meeting, Mr. Modi said in every free trade agreement, the interests of Indian farmers have been given the highest priority.
2: Free trade agreement kai deshon ke saath Bharat ne kiya hai.
3: India has signed free trade agreements with several countries. Honorable Prime Minister has stated that these agreements have been concluded while giving the highest priority to the interests of Indian farmers. He has also emphasized that the welfare of the farmers and the broader national interests have been the foremost considerations in every agreement.
2: Isliye ye kisanon ke hit mein aur desh hit mein rahega.
1: Rashtriya Lok Morcha Chief Upendra Kushwaha said that the Prime Minister reaffirmed the government's commitment to ensuring transparency and fairness in the conduct of competitive examinations during the NDA Parliamentary Party meeting. Talking exclusively to Akashwani News at Parliament premises, Mr. Kushwaha said the re-examination for NEET was conducted with complete integrity and future examinations will also be held in the same transparent manner.
4: The NEET examination has been conducted fairly and transparently. Strong measures have been taken to ensure that future exams are also held with integrity. Students should stay relaxed and focused on their studies. Those responsible for corruption and malpractice have been punished according to the law.
1: The Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. and Rajya Sabha for the day amidst opposition uproar on various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the House took up motions for election to different committees of the Parliament amid opposition uproar. Presiding Officer Sandhya Ray urged the members to return to their seats and allow the House to function smoothly. She said 0 hour belongs to the members and the entire country is watching the proceedings of the House. Despite her appeal, the opposition members came to the well with placards and carried on sloganeering over NET and student protests. It led to adjournment of the Lok Sabha till 2 p.m. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of the paper leak of the NET examination. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. When the upper house met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan appealed to opposition members to go to their seats and allow the functioning of the house, but the opposition did not pay heed to his advice. Amidst the uproar, the Rajya Sabha was adjourned till 2 p.m. And then for the day, news just came in. The Lok Sabha also has been adjourned for the day. Leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, today met Lok Sabha Speaker Om Birla and said the opposition wants a discussion on the issue of students. Talking to reporters outside Parliament, Mr. Gandhi said the issue concerns students and the future of the
5: youth. These students here, they are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. This is not just about education. This is about the future of young people. That is what this is about. This is much bigger than simply education.
1: The government has refuted several social media posts claiming that a girl died on the spot during protests in Delhi yesterday. The fact-check unit of the Press Information Bureau has clarified that the claim is fake and said no protest-related death has occurred in Delhi. India today summoned the Russian charge d'affaires Vladimir Ladanov following the attack on the commercial vessel MV Golden Leo on the 19th of this month, which resulted in the tragic loss of 4 Indian lives. Conveying grave concern and unequivocal condemnation of the attack. The Ministry of External Affairs said such attacks undermine the safety, security and stability of international maritime commerce. The ministry said Mr. Ladanov was requested to convey India's strong concerns to his authorities that the targeting of commercial shipping and the resulting loss of innocent civilian lives is unacceptable and must be avoided. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. In Sikkim, 11 bodies have been recovered so far as rescue measures have been intensified to evacuate people trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi district. The senior superintendent of police of Namchi district informed that 11 bodies have been recovered by the rescue teams. It is suspected that at least 25 people are trapped inside the tunnel, which collapsed likely due to landslides yesterday. Prime Minister Narendra Modi spoke to Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamangole and assured all assistance, extending condolences to the bereaved families. Mr. Modi, in a social media post, prayed for the speedy recovery of the injured. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. The Namchi District Administration, in coordination with NHPC officials, the SDRF, NDRF, Sikkim Police, Fire and Emergency Services, the Health Department and other line departments, is continuously carrying out the rescue operation. Akashwani correspondent reports that the incident occurred yesterday at the NHPC project in Samardung, South Sikkim. We have more from our correspondent.
6: Despite rains and challenging weather conditions, rescue teams are making every effort to safely evacuate the stranded workers. It is believed that at least 25 persons are trapped inside the 7-kilometer long tunnel at Samardang. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah spoke with Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamangole and assured all assistance to tackle the situation. Meanwhile, district administration have identified 7 bodies so far. Senior officials are on the spot to monitor the rescue operation. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
1: President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have expressed grief at the loss of lives in Sikkim. In a social media post, the president shared condolences to the bereaved families. The president also prayed for the speedy rescue and safe evacuation of the other workers and quick recovery of the injured. In a social media post, Mr. Radhakrishnan conveyed condolences to the bereaved families. The Char Dham Yatra in Uttarakhand resumed today after a one-day suspension. The pilgrimage had been temporarily halted yesterday as a precaution due to continuous rainfall and the risk of landslides along the pilgrimage routes. Our correspondent reports.
7: The Char Dham Yatra is being conducted in coordination with the district administration, police, STRF and other concerned departments. Pilgrimage routes are under constant surveillance with heightened vigilance being maintained in vulnerable areas. Garhwal Commissioner Anand Swaroop has appealed to the pilgrims that if a route is temporarily blocked due to heavy rainfall, landslides or any reason, they should stay only at the safe locations or holding areas designated by the administration and to follow the instructions issued by the administration and police. He has mentioned that the safety of pilgrims remains the administration's highest priority. All concerned departments have been directed to keep a constant watch on weather conditions and the status of the pilgrimage routes. The commissioner has also urged pilgrims to check the latest weather updates before commencing their journey and to rely only on official information issued by the administration. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
1: Monsoon activity continues to remain active across Himachal Pradesh, with persistent rainfall affecting several parts of the state. The Meteorological Centre, Shimla, has issued an orange alert for heavy rainfall at many places during the next 24 hours in 5 districts, Chamba, Kangra, Hamirpur, Mandi and Kullu. A report.
8: The spell of monsoon rain continues across Himachal Pradesh, disrupting normal life in several areas. Continuous rainfall has led to a rise in the water levels of rivers and streams across the state. Additional water is being released from the Karcham Dam in Kinnaur district and the Giri Jaton Dam in Sirmaur district. The local administration has advised people living along river banks to remain vigilant and strictly follow safety advisories issued from time to time. Meanwhile, traffic on National Highway 5 has been disrupted due to landslides at Shelkhar and Samdho in Kinnaur district. In Lahaul Spiti, vehicular movement has come to a halt after a link road was washed away by flash flood in the Jahalman Nala. In Shimla district, 16 link roads in the Theok subdivision have been blocked. In Chamba district, the Lahadu Nurpur main road has also been blocked following a major landslide at Tikkar Galadhar. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: Meanwhile, the Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Muzaffarabad for today. IMD also issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, East, Madhya Pradesh, Goa, Madhya Maharashtra and parts of Northeast India for the day. The Central Drugs Standard Control Organization has granted marketing authorization for India's first dengue vaccine, the attenuated dengue vaccine Qdenga-R, to strengthen national dengue prevention efforts. This is the first dengue vaccine approved in the country for the prevention of dengue disease. The vaccine is approved for the prevention of dengue disease in individuals of 4 to 60 years of age. The vaccine has already received regulatory approval in 42 countries, including the European Union, the United Kingdom, Switzerland, Indonesia, Malaysia and Thailand. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravali Hills and ranges. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses supported by documentary evidence or other verifiable material through email at mshbcaravali@gmail.com within 3 weeks. Martyrdom Day is being observed by the Congress and the two factions of the Trinamool Congress in West Bengal today. On the 21st of July 1993, 13 workers of the Youth Congress were killed by the police firing in Kolkata. In China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10, 21-14 defeat to Malaysia's Leong Jun Hao in Changzhou today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namche district. Rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
9: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत कई लोग फंसे बचाव कार्य जारी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं दलगत राजनीति का विषय नहीं है ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें
9: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा
9: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया
10: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई
9: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
11: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है, तो भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
9: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
12: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
9: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
13: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
9: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समुद्र में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
9: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
8: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
9: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
9: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8

कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1
2: मेगाहर्ट्ज़। तो मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद अब वक्त हो चला है रोज की तरह हिट्स ऑफ 90s को आगे बढ़ाने का। जी हाँ, हिट्स ऑफ 90s में हम सुनते हैं 90s के वो सुहाने नगमे जो आज भी हमारे दिल के बहुत करीब हैं। करीब इसलिए क्योंकि हर लफ्ज हर गाने का ऐसा लगता है जैसे मेरी कहानी है, मेरी अपनी जुबानी अपनी कहानी सुन रही हूँ। तो दोस्तों, मैं भी यही सोचती हूँ कि हिंदी फिल्मी गानों के साथ ये जो सफर है, मेरा गहरा रिश्ता है दिल से। और जो श्रोता हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी के ईटानगर के FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ का, और आगे सुनने वाले हैं हिट्स ऑफ 90s में 90s के वो सुहाने नगमे, तो उनको भी यही लगेगा कि जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं 90s के उस सुनहरे दौर में जहां जिंदगी धीमी जरूर थी बल्कि वहां सुकून था, मोहब्बत था और दोस्ती थी। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और इस वक्त आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने हिट्स ऑफ 90s। जी हां, 90s के वो सुनहरे नगमे जो हमारे दिल के करीब हमेशा से है, और हर गीत हमें ये याद दिलाता है कि लाइफ कितनी खूबसूरत थी 90s में। जी हाँ, आज भी लाइफ खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि आज का जो लाइफ है, आज के जमाने की जो लाइफ है बहुत ही बढ़िया नहीं है। है बढ़िया, लेकिन 90s के गाने सुनिए ना तो आपको लगेगा कि सच में जिंदगी कितनी सुकून भरी थी। चलिए आनंद उठाते हैं अगला गीत।

श्रोता दोस्तों, इसी गीत के साथ ही हिट्स ऑफ 90s यहीं पे समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस और उसके तुरंत बाद मिशमी कमांड कार्यक्रम और उसके बाद ताई खमती कार्यक्रम। और कुछ ही पलों में यानी कि 3:30 पर हम फिर से लौट कर आएंगे बॉलीवुड अपडेट्स के साथ आकाशवाणी के रेन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अरुणाचली कराटे का क्यों दाता लिख कंसम जोनी मंकिया ने पे ऑन कंसी मंग अरुणाचल प्रदेश में सासनासी मेडल्स लुक साउथ एशियन सीनियर कराटे चैंपियनशिप सोंग हिंग सा हो ढाका बांग्लादेश में औटोलिन में ओपी ओपी कनमा का नम हो चौदह तालिक ने टीम काटा गोल खनसम नई के सिल्वर मेडल सोंग अन लुक जोनी मंकिया ओपी कन मा का यो चोम अखिंग नाम नली न खोक स्टूडियो में चिकन मवा चफा पॉय नहीं खामते खामती तिखे मई सुट यो हो

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz तेरे दिल का मेरे
2: दिल से। जी हाँ दोस्तों, दिल से दिल का रिश्ता जोड़ते हुए आप तक पहुंचते हैं आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz अरुण FM। आप सुन रहे थे ताई खमती और मिशमी कमान कार्यक्रम आकाशवाणी के ईटानगर के केंद्र से। अब वक्त हो चला है आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz पर सुनने का बॉलीवुड अपडेट्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और रुख करते हैं बॉलीवुड की रंगीन दुनिया की ओर, जहां हर हफ्ते पर्दे पर नई कहानियां, नए सितारे और नए रोमांच दर्शकों का इंतजार करते हैं। इस समय सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है अल्फा। 10 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी पहली बार एक दमदार स्पाई मिशन पर नजर आ रही है। YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म होने के कारण इसे दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप अंग्रेजी फिल्मों के फैन हैं और आपको पसंद है तो आप ओडिसी जरूर देखें, बहुत ही शानदार फिल्म है, आपको बड़ा मजा आएगा। रोलर कोस्टर जर्नी ऑफ टू पीपल जो प्यार में है। कहानी तो है प्रेम कहानी, लेकिन प्रेम कहानी को सीधे नहीं बल्कि थ्रिलर और उसमें बहुत सारे रोमांच है और रहस्यमयी बातें हैं, बहुत सारी उसमें मसाले हैं। ओडिसी जरूर देखें। और साथ ही साथ अब बातें करते हैं आने वाले रिलीज की। 24 जुलाई को रिलीज होगी रफ्तार, जिसमें राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश पहली बार साथ नजर आएंगे। इसके अलावा सामाजिक विषय पर आधारित इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस भी इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है, पहले से ही काफी चर्चे में है वैसे। और जुलाई के आखिरी शुक्रवार यानी 31 जुलाई को रिलीज होगी कॉमेडी ड्रामा साइड हॉर्सेस, जिसमें अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना और वरुण शर्मा की टिकड़ी दर्शकों का मनोरंजन करती नजर आएगी। तो दोस्तों जुलाई का महीना बॉलीवुड प्रेमियों के लिए एक्शन, कॉमेडी और मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आने वाले दिनों में आपके पास बड़े पर्दे पर देखने के लिए कई शानदार विकल्प मौजूद है, यानी कि कई सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। फिलहाल बॉलीवुड अपडेट्स में बस इतना ही, अब आगे बढ़ते हैं अगले मधुर फिल्मी गीत की ओर।

0: श्रोता दोस्तों, वक्त हो चला है वांछित श्रोताओं के समाचार सुनने का।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अन्य जुलाई ले मिनी सा मतलब तारीख मंगलवार ई पोहांसों आजम बाजी पुनी मिने ठुंगे के पिशन के वांचो साइका पांग कपे पोंगा कहो पांग पाले वांग का वांग्सवे हुआ कसम देस तो अपोंसो अंका के प्रेसिडेंट रोबर्ट डी मुर्मू काट ए अन्य अंपा देस नॉर्थ मेसिडोनिया देस कपना बोमा हजा देस तो इंडियन प्रेसिडेंट अपों अंका के इजती होवांग थम अंपा चांगले President Murmu aja des ma des ni ba makya mama moholi homo kosat mo vanaze le haja des president Gordana Silja Noska Davkova pai apong asokya bo ma haja des prime minister Hristi Jan Mikoski hia assembly speaker Arif Gasi ni pai chu apong asawai bo ma president Murmu a North Macedonia des assembly tu so mazang van ka chu ze kahoma ajang ba president Murmu a haja bo ma India North Macedonia business forum tu so ma chu zang van ka ze bo ma chi send spas charge to apong aso ang chu haile toi prime minister Narendra Modi a ani सिक्किम स्टेट नामची डिस्ट्रिक्ट मा मणि जिंगेजाव लंगोनुय तेके टनल मा ngai dong ke ta thamjan chang pan incident ba ma ataya vai ang Sikkim state chief minister Prem Singh Tamang pai zawan ka zele aja ba ma chief minister Tamang eta social media ka ho ma prime minister aja ma aja Singh an toy tai zu to central government pang nu lama so phong la phai hele van pu le van an tole home state pai apong sau ke aja toy tai to हुआ मैं अं हले चौना खाई ले वही सांग आउले है क्या हान पक मा प्राइम मिनिस्टर तो ची मंग मै हु क्या का गाय वल्ले मिस्टर तामंग आजा बामा हाजा थमजन संपन ए पो पक क्या खनक मिसापो खो सेशन अं क्या रेस्क्यू मोड सत मा एनडीआरएफ एसडीआरएफ एसएसडीएमए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थम होनोई लोकल पुलिस थम Rangpo Honoi PHC Hingham Angke Medical Team Tham Hia Honoi Kanaknu Jo Khatla Jo Mokasat Le Ngole Taile Le Van Le Drug Controller General of India DCGI E India E Ho Wang Tham Ang Zinge Jo Kya Dengue Kak Vaccine Hing Q Denga Hing हिंगहाई तो अप्रूवल कोड वा बोमा हजा वैक्सीन हिंग ताकेदा बायो फार्मास्यूटिकल इंडिया होतम जिंगे जोल अलाइक चंगतेले हजा बा मा ताकेदा बायो फार्मास्यूटिकल इंडिया होतम हजा वैक्सीन हिंग ए देश मा जंगपो तो जो मिलियन मिलियन खनक नु तो पो पाकले सथम तैक्या मुनचों मखंग ए कपलो क्या होली डेंगू कक अब अमतंक्या लम्मा इंडिया तो फोंगु Honghu Angkya

आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुणा एफएम पर आपका फिर से स्वागत है। आइए चलिए फिर से दोहराते हैं अपने सफर को और सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने कुछ ही पलों में, यानी कि आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गाने को।

श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ पलों के लिए आपको रोकना चाहेंगे इनोमेश में श्रोताओं के समाचार के लिए, और तुरंत बाद 4:05 पर हम फिर हाजिर होंगे हिंदी फिल्मी गानों के साथ। तो बने रहे आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे इडुमिश में श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर अचल पुजे जान्यो खेगे आंडोलिनी एतनिचे इडुमिश में आहोला केजे दरगालंबो औता अंतिका सम्मा मेलो छिदे इंडिया माचे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में नॉर्थ मेसोडोनिया मा खेगे ने आ माचे प्रेसिडेंट गोर्दोना सिल्जा नॉब्सका देवकोवा प्राइम मिनिस्टर रेस्टिजान मिकोक्सकी दोने असेंबली स्पीकर अप्रिम गासिगो चौगा पा नॉर्थ मेसोडोनिया असेंबली मा चिचावे बौदा ला होगा आ महो प्रेसिडेंट में इंडिया नॉर्थ मेसोडोनिया बिजनेस फोरम माचे इमुगो चिचागा एदोने चार्च ऑफ सेंट स्पास मा खिगने मेसोडोनिया माचे आतिका के बने हुबा गोर दालसेप जी ब्रचा आसेपु आखा होय बौदा ला होगा बुनि सिक्किम नामचिक आदिकोचि एनएचपीसी में आजिगा तिस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट माचे एलएनजी आछे पिगा चमे तुम्बो बने गादापु इमु हो जिगे आ एलएनजी पिता जया इमु शिगा बा आइदोने आनि हो बुशी एलएनजी कोको तोतगा बदा लगाचे फाबु ग बने एनडीआरएफ एसडीआरएफ एसएसडीएमए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस पीएससी तमको माचे मु आइदोने अतिकोचि किसा मुमे हुआ चिपुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में फोन नेगने सिक्किम माचे चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांगो चिचगादा होगा आइंडो में थोबने डेंगू एम्बे अरुण चाताओ पूछे क्यूदेंगा लाएगा वैक्सीन तमागे ताकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया लाएगा कंपनी में अजितगा बचा है प्रभुदा ने ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई में लातिका बता ने आ कंपनी मच में ला होगा काफी नुमा ने तारुनु एबगा चे इमु में आ वैक्सीन तमा ठाई तो पाओ आइंडो में थोबा मने डेंगू एम्बे यौंगुम दाने कंपनी मच में ला होगा ने क्यों देंगा डेंगू वैक्सीन तमा है एहा ठाचिम ने बे एंदो इमु ठाते हाजी गावदा ला होगा कारगिल आंदोचा सिगाबा चपहया नंबर वलामा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट माचे यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में एचला पुचे जान्यो एहो इन्ना मेलिनी माचे ने ईटानगर चे इंदिरा गांधी पार्क माने कारगिल विजय दिवस रेन रन प्रोग्राम अखगाव दाने डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेंट में लगादा होगा अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोना में बुने नीति आयोग मेंबर डॉक्टर जोराम आनिया गो चौगा गने अतिकाचि उखो अरुणदा थोपोंदो चिपुआ चिचगा हिबादा ला होगा आजो अहितवा ग बने उखो लेबा हामी खागा सना मांचु आशुमा पुनी ईटानगर मा एजारी उखो मिची मेआ याकु मेआ तांदो याते गने आकाशदीप माने इंदिरा गांधी पार्क माचे टेनिस कोर्ट मा लेबा ग्राची तेगा महो तवांग पासीघाट अनिनी रोयंग तोने तेजुला प्रगे अरुणाचल प्रदेश माचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मा माबो अलि ग्राची गादा अहोगा नीट एग्जाम लापगे एग्जाम काची चुमा माचे ताहुला आजप्रा अमया कुतागा इचि एगाचिम बुदालाने बुनि इनिबो अचि होलोके बजाना सुमिलिमा आकाशदीप माने ग्राची गाबेने इतानगरचे इंदिरा गांधी पार्क मालिबा सितिगा चिता अहोगा अबुन्याना पपुमपर डिस्ट्रिक्ट लाप्रगे अरुणाचल प्रदेश माचे होलसो डिस्ट्रिक्ट मा नाप्रा आयो अरुणा मयादोने अभिरुचि औषधा ने इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी माचे में ला होगा ओमान माचे मस्कट आतिकोने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी में यूथ हॉकी चैंपियनशिप अखनेगा मा बुनि इंडिया माचे याकु टीम में कजाकिस्तान है इयुक्त कांसो गोल माने अनेगा बमा मेरा टीम में बांग्लादेश है इमु कासो गोलमा ने अनगा बदा होगा बांग्लादेश माचे ढाका टिको ने बुहू लीनाबा साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप अखगा मा एम बेगा अरुणाचल प्रदेश माचे कराटे तावया में ताहो गोल्ड कासो सिल्वर दोने कापी ब्रॉन्ज मेडल लापागे also medal hanegaya badane Arunachal Pradesh Amateur Karate Do Association apakamachime lahuga amaho kyoda talik ne joni mankya lapage ati machi membrana me golden silver medal anendegaya bachahe engo khoga babdane chief minister pema khandume norgada ahuga echa akaswani itanagar dibrugarh nali It miss me programma, echamta, ashe, and also kiamaho, etany hando, ani menace tashi, anji.
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज तेरे दिल का
4: दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से आकाशवाणी के रेडियो एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ बने हुए और सुन रहे हिंदी फिल्मी गाने मिशमी श्रोताओं के समाचार के बाद और श्रोता दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप जारी रखना चाहते हैं सुना यदि मिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम तो आप ट्यून इन कर पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर अगर आप मेरे साथ ही बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर तो चलिए चलते हैं फिल्मी गानों के सफर पर

0: दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी दूसरी प्रसारण सभा का खूबसूरत सफर यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी बातें, मधुर गीत और साथ बिताए ये प्यारे पल आपके दिल में मुस्कान, सुकून और सुनहरी यादें छोड़ गए होंगे। अब हमारी तीसरी प्रसारण सभा का, जिसके बागडोर संभालने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं आपके अपने आजीव साजीव, तो कहीं जाएगा नहीं, जुड़े रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। प्रसारण अधिकारी गए रहते, तकनीकी अभियंता ए के सक्सेना और मुझे यानी आरजे नूरी को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन आपका खैर।
1: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा दुबासनई सोम जुलाई जलिंग रंखुआ सी तारीख आरा उरंगिया बलई बजी खू मिनिट थोरजा मसो तांगसा प्रोग्राम तफांगराय रुंगनारु कोहांग वासिम केंगलांग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सरोम रांग आरो मूंग नंग स्टेट विजिट नंग का तंग नॉर्थ मेसिडोनिया मूंग नंग थोकतंगो रोक आरो इरप अफांगलक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ मेसिडोनिया मूंग नंग कारंगो रोक प्रजु प्रेसिडेंट मुर्मू र मेसिडोनिया प्रेसिडेंट गोर्दाना सिल्जानोवस्का दफकोबा जम बायलेटरल टॉक मीटिंग कथुंगी परम प्रेसिडेंट मुर्मू र प्राइम मिनिस्टर हिस्तेजान मिकोस्की नई स्पीकर ऑफ असेंबली अफिम गासी जाममन रहमची अरौ नॉर्थ मेसिडोनिया असेंबली नांगमन प्रेसिडेंट मुर्मू र मसौ फानचिंगो रुक प्रेसिडेंट मुर्मू र इन नॉर्थ मेसिडोनिया बिजनेस फोरम कथुंगची नांगमन मसौ फानचिंगो रुक अरौ वसनई मुंग फांग कौम एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल साइंस नई टेक्नोलॉजी परम आईटी नई आईटीईएस परसो सेक्टर काउनांग करुमरौ काम अरेंग सताइरंगो रुक्त अरो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू र चर्च ऑफ सेंट स्पास पर रायकची परजु अपीर वमंगरो मेसिडोनियन रिवोल्यूशनरी गोर डालसेप मांगबंगचिंग नांग फानपुंग नुंगचिंगो रुक्त सिक्किम नंग नामची डिस्ट्रिक्ट नंग टनल मंडक नंग इंसिडेंट कजांत परजु मछो रेस्क्यू ऑपरेशन काम रो सहेर परप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र सिक्किम वांग चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग जाम र फांतंगो रो द चीफ मिनिस्टर तमांग र सोशल मीडिया पोस्ट कुदनांग अचोंग गवर्नमेंट र वसडोप जांगची होहाय प कुचिंगोरो प्राइम मिनिस्टर र काखाम कुतंगो रो द अरो पर इंसिडेंट कजांत जगानंग एनडीआरएफ एसडीआरएफ एसएसडीएमए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोकल पुलिस नई मेडिकल टीम र करुमरौ रेस्क्यू कैंप सोम रुमरौ सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग रुक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई र डेंगू मफम क्यूडेंगा वैक्सीन म मार्केट ऑथोराइजेशन कुतजामसो इंडिया र मुंगवांग अफंग डेंगू वैक्सीन पर अप्रूव कुरी तंगो रोक द ताकेदा बायो फार्मास्यूटिकल इंडिया र पर डेंगू वैक्सीन पर मानत अराउ पर वैक्सीन अप्रूवल कुत पर र सोडोंग र काग्रवांग रखोंग र डेंगू रक सांगनांग इंडिया र रमुरक्षिंगो रोक द अराउ पर पांग बलई म पांग करोक से तुंगवांग मई म वैक्सीन पर अप्रूव कुरी तंगो रोक द कारगिल विजय दिवस रबु म गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश

0: दोस्तों, अगर निभाने की इच्छा दोनों तरफ से हो तो दुनिया का कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटता। हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आपकी अपनी आरजे नूरी के साथ, और अब आपके सफर में जुड़ चुके हैं आपके रेडियो साथी साजिद इकबाल। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। दोस्तों, गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम बात करेंगे हंसने के फायदे के बारे में। हंसना सिर्फ हास्य पर होने वाली एक सहज प्रतिक्रिया नहीं है, यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हंसने से एंडोर्फिन नामक प्राकृतिक रसायन निकलते हैं, जो तनाव को कम करने और खुशी का एहसास दिलाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा हंसने से रक्त प्रवाह बढ़ता है और रक्त वाहिकाओं का कार्य बेहतर होता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ाकर और प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करके प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। नियमित रूप से हंसने से दर्द कम होता है, सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं और शरीर और मन को स्वस्थ और अधिक लचीला बनाने में मदद मिलती है।
1: आज प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हवा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील कर सील
2: टाइट वेरी टाइट

0: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों गुड इवनिंग, ईटानगर में हम बात कर रहे हैं हंसने के फायदे के बारे में। दोस्तों हंसना, जिसे अक्सर एक सार्वभौमिक मानवीय व्यवहार माना जाता है, प्राचीन सामाजिक अंतःक्रियाओं से उत्पन्न हुआ और माना जाता है कि यह समूह संबंधों को मजबूत करने और खतरे से मुक्ति का संकेत देने के तरीके के रूप में विकसित हुआ है। दोस्तों हंसने से एंडोर्फिन हार्मोन निकलते हैं और एंटीबॉडी व प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन तेजी से बढ़ता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है या प्राकृतिक शक्ति शरीर को संक्रमणों और बीमारियों से अधिक प्रभावशाली ढंग से लड़ने में हमारी मदद करती है। दोस्तों नियमित रूप से हम हंसने से तनाव हार्मोन कम होते हैं, जो अक्सर प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाकर हंसी समग्र व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य में योगदान देती है और सर्दी जुकाम फ्लू और कई बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत एंटीबॉडी बनाए रखने में हमारी मदद करती है। दोस्तों दैनिक जीवन में हंसने को शामिल करना शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और लंबी उम्र पाने का एक आसान लेकिन शक्तिशाली तरीका है।
1: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। ऑफिशियल

दोस्तों, हंसी शरीर के मुख्य तनाव हार्मोन कोर्टिसोल और एंडरलाइन के स्तर को कम करके तनाव से राहत दिलाने का काम करती है। यह कमी मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के तनाव के कम करने में मदद करती है, जिससे मन शांत रहता है। हंसने पर मस्तिष्क एंडोर्फिन छोड़ता है, जो सुख और आराम की भावना को बढ़ावा देता है। हंसने से ऑक्सीजन का सेवन भी बढ़ता है, जिससे तंत्रिका तंत्र शांत रहते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी न्यूज, इंग्लिश न्यूज और नुक्ते श्रोताओं का समाचार। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी 5:05 में कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के साथ।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष में अरुणाचल प्रदेश सरकार युवा कार्य निदेशालय द्वारा रविवार को ईटानगर में करगिल विजय दिवस रेन रन 2026 का आयोजन किया जाएगा। यूथ फॉर चेंज नामक युवा संगठन द्वारा ईटानगर में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरामान्या से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न साझा हेतु विषयों पर चर्चा की गई। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग में ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने एक वाणिज्य जहाज पर हमले के 4 भारतीय नागरिक की मौत के मामले में रूस को तलब किया। और चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणय का अभियान पहले दौर में समाप्त। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भविष्य में परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। नीट को लेकर उन्होंने कहा है कि जो गड़बड़ी हुई है लोग पकड़े गए हैं।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा

0: की जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपने सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीत मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि ये मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
2: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश सरकार के युवा कार्य निदेशालय द्वारा रविवार को ईटानगर स्थित आईजी पार्क में करगिल विजय दिवस रेन रन 2026 का आयोजन किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री जोना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से इस सामूहिक दौड़ में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। यूथ फॉर चेंज नामक युवा संगठन द्वारा कल ईटानगर में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सुबह लगभग 11:30 बजे आकाशदीप से शुरू होकर आईजी पार्क में संपन्न हुआ। रैली में छात्रों, अभिभावकों और युवाओं ने भाग लिया। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता को उजागर करना है। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम आनिया से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न साझा हितों के विषयों पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोना ने लिखा है कि डॉ. आनिया के साथ बातचीत कर राज्य के विकास संबंधी आकांक्षाओं तथा विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना सुखद रहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सार्थक बैठकों से नए विचारों का बढ़ावा मिलता है और अरुणाचल प्रदेश के विकास एवं प्रगति के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता और अधिक मजबूत होती है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
3: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। भारत ने वाणिज्यिक पोर्ट एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया है। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव ने कहा गया है कि व्यापारिक जहाजों

0: को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। औषधि महानियंत्रक DCGI के तकेदा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति प्रदान कर दी है। तकेदा के अनुसार ये मंजूरी भारत में डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जिससे हर वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ये वैक्सीन 4 से 8 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसे उन लोगों को भी लगाया जा सकता है जिन्हें पहले कभी डेंगू हुआ हो या नहीं हुआ हो। अन्य कुछ डेंगू वैक्सीनों के विपरीत क्यूडेंगा लगाने से पहले डेंगू संक्रमण की पूर्व जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पात्र व्यक्ति बिना पूर्व जांच के ये वैक्सीन लगवा सकेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति को और खराब हो गई है। राज्य भर में लगातार बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ताजा खबरों के अनुसार राज्य के 16 जिले प्रभावित हुए हैं। इनमें जोरहाट, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, धेमाजी, तिनसुकिया और गोलाघाट शामिल है। कुल 45 राजस्व सर्कल और 794 गांव पानी में डूबे हुए हैं। इसमें 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 19,000 हेक्टेयर से अधिक खेती वाली जमीन पानी के नीचे दबी हुई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। कुल मिलाकर 101 राहत शिविर और वितरण केंद्र खोले गए हैं। इनमें 9,600 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सेना और अन्य एजेंसियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 6,700 से अधिक लोगों को बचाया है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के HS प्रणय का अभियान पहले दौर में समाप्त हो गया है। चंगजाओ में आज खेले गए मुकाबले में HS प्रणय को मलेशिया के लियान जून हाओ ने 21-10, 21-14 से हराया। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Priya Badu. The National Democratic Alliance Parliamentary Party meeting, now known as Mangal Milan, was held at the GMC Bal Yogi Auditorium in Parliament House today. During the meeting, NDA Alliance partners passed a congratulatory motion honouring Prime Minister Narendra Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leakage in future examinations across the country. He said Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in examination paper leaks and safeguarding the interest of the country's youth. The Prime Minister said all those involved in the recent NEET paper leak case have been arrested, with 13 accused currently lodged in jail. Mr. Rijiju said Prime Minister Modi also spoke about the free trade agreements that India has signed with several countries. During the meeting, Mr. Modi said that in every free trade agreement, the interests of Indian farmers have been given the highest priority. Rashtriya Lok Morcha Chief Upendra Kushwaha said that the Prime Minister reaffirmed the government's commitment to ensuring transparency and fairness in the conduct of competitive examinations during the NDA Parliamentary Party meeting. Talking exclusively to Akashvani News at Parliament premises, Mr. Kushwaha said the re-examination for NEET was conducted with complete integrity and future examinations will also be held in the same transparent manner. Leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, today met Lok Sabha Speaker Om Birla and said the opposition wants a discussion on the issue of students. Talking to reporters outside Parliament, Mr. Gandhi said the issue concerns students and the future of the youth. The government has refuted several social media posts claiming that a girl died on the spot during the protest in Delhi yesterday. The fact-check unit of Press Information Bureau has clarified that the claim is fake and said that no protest-related death has occurred in Delhi. India Today summoned the Russian Shadi d'Affaires Vladimir Ladanov following the attack on the commercial vessel MV Golden Leo on the 19th of this month, which resulted in the tragic loss of 4 Indian lives. Conveying grave concerns and unequivocal condemnation of the attack, the Ministry of External Affairs said that such attacks undermine the safety, security and stability of international maritime commerce. The ministry said that Mr. Ludanov was requested to convey India's strong concerns to his authorities that the target

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। लुक्खागिरी करके अपना टाइम पास होता है, बीड़ी पान चाय मिलता है, बस अपुन खुश। ये प्यार का लफड़ा लोचा काई को, काई को, अरे काई को रे।

0: अपुनका खोपड़ी संका कल्लन को पकड़ा और बोला इधर आ शाने तेरे को कयामत दिखाता हूँ। साले को इतना धोया अभी तक थोबड़ा वाक रहा है और आज तक अपुन के साथ उसका 36 का आंकड़ा है। समझा समझा क्या?
1: फिर हेमा का क्या हुआ?

साला एक एक सपना देखा था, लेकिन मां कसम एक आंसू नहीं रोया। काय को रोएगा, काय को रोएगा, साला अपुनी जेड़ा था ना। अगले दिन वही पहले के माफिक लाइफ चालू, वही गंदे क्लास में जाए, वही पान बीड़ी। अजीज को इतना मारा लोग समझे वो मरेगा। भूलने का है, भूलने का है, पर क्या करेगा।

थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है कुछ सुकून के पल जीने का, कुछ दिल की बातें करने का और कुछ बेहतरीन नगमों के साथ यादगार शाम बनाने का। कहते हैं कि शाम ढली तो यादों ने दस्तक दी, हवा ने भी कोई पुराना किस्सा छेड़ दिया। चलो कुछ गीतों के सहारे मुस्कुरा लें, शायद दिल ने फिर जीना सीख लिया।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं होती, बल्कि किसी की पूरी दुनिया बन जाती है। जब किसी का साथी जिंदगी की वजह बन जाए तो दिल की हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है। इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता है अगला गीत। प्यार, समर्पण और गहरी भावनाओं से सजा यह गाना आज भी लाखों दिलों की पसंद है।

अच्छा दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: सबसे बड़ा मुकाबला, जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों, अगले कुछ पलों के लिए आप

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त आपका अपना होस्ट आरजे नाना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में।

दोस्तों आज का एपिसोड थोड़ा खास है, थोड़ा इमोशनल है और बहुत सारा नॉस्टैल्जिकली मैजिकल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस आवाज की जिसने हमारे स्कूल लाइफ की फेयरवेल्स को मोमेंट बनाया है, हमारे पहले क्रश को क्या मुझे प्यार है सिखाया और हमारे ब्रोकन हार्ट्स को तड़प तड़प के संभलना सिखाया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही गेस किया है, आज हम बात करेंगे दी वन एंड ओनली द लेजेंडरी कृष्ण कुमार कुन्नत, जिसे हम प्यार से जानते हैं केके के नाम से। यू नो गाइस, केके सर का जो मैजिक था वो उनकी सिंपल सोल स्टीरिंग वोकल टेक्सचर में था। नो फॉर्मल क्लासिकल ट्रेनिंग, नो फैंसी वोकल गिमिक्स, जस्ट प्योर पैशन। दोस्तों मुंबई आने से पहले केके वाज एक्चुअली वर्किंग एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इमेजिन, सेल्समैन से लेकर इंडिया के सबसे बिलवेड प्लेबैक सिंगर बनने तक का जर्नी। दोस्तों इन 1999 व्हेन हिज एल्बम पल ड्रॉप, इट चेंज एवरीथिंग। स्कूल एंड कॉलेज फेयरवेल्स हैड ए नेशनल एंथम विद यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, और वही और उसी साल फिल्म हम दिल दे चुके सनम में इस्माइल दरबार साहब का कंपोजिशन तड़प तड़प के इस दिल में आया और बॉलीवुड को मिला उनका नया सुपरस्टार सिंगर केके। तो चलिए दोस्तों याद करते हैं उसी लेजेंडरी आवाज को और सुनते हैं उसी की आवाज में एक बेहतरीन गाना फ्रॉम द फिल्म हार्टलेस। लीजिए दोस्तों ये फिर से बेहतरीन गीत सुनते रहिए और बने रहिए रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।

चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केके का 90s और 2000s का ग्राफ देखो, इमरान हाशमी की स्क्रीन प्रेजेंस और केके की वॉइस, इट वाज ए मैच मेड इन म्यूजिकल हेवन। जरा सा हो, दिल इबादत हो या तू ही मेरी सब हो, इन गानों के बिना हमारी लेट नाइट ड्राइव्स इनकम्प्लीट होती है। वेलकम बैक टू द आज की कलाकार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। चलिए दोस्तों आइए सुनते हैं केके की आवाज में एक और बेहतरीन गीत, क्या मुझे प्यार है। ओनली ऑन अरुणा FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों के सर, जी हाँ दोस्तों, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्हें लेमलाइट से ज्यादा अपनी म्यूजिक से प्यार था। नो कॉन्ट्रोवर्सीज, नो अनवांटेड ड्रामा, जस्ट हिम, हिस माइक एंड मिलियंस ऑफ फैंस सिंगिंग अलोंग एट द टॉप ऑफ द लंग्स। मई 2022 में उनका जाना फेल लाइक ए पर्सनल लॉस टू एन एंटायर जनरेशन। वी लॉस्ट द वॉइस दैट सेंग फॉर एवरी इमोशंस वी कुडन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। लेकिन जैसा कि वो हमेशा गाते थे, हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल। उन्हीं उनकी आवाज़ और उनके गाने हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत उन्हीं की आवाज़ में।

0: 승리 나홀 나홀 나홀
1: तो श्रोता दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम आज के कलाकार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब श्रोता दोस्तों अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार। उसके बाद हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में हिंदी फिल्म सॉन्ग के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर हिंदी फिल्म सॉन्ग के साथ।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे।
0: जी जी जी राधे राधे
1: जी, हमारे दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे हैं, है
0: जी
1: ना?
0: जी जी अनूप धाम में बहुत ही बढ़िया हूँ
1: जी जी
0: जी
1: तो दोस्ती जिंदगी का खूबसूरत लम्हा है, जिससे मिल जाए तन्हाई में भी खुश, जिसे ना मिले भीड़ में भी अकेला। और मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि, आसाम से तालुका है,
0: जी जी जी
1: है ना? क्या हुआ मेरे दोस्त, मैं दो मोबाइल से ट्राई कर रहा था।
0: अच्छा जी
1: एक मोबाइल है, बड़ा मोबाइल, वो 5G का है, और दूसरी है वो जियो भारत का।
0: अच्छा
1: लेकिन क्या होता है, मतलब हमारे दोस्त से बातचीत तो जियो भारत से हो रहा है, मेरे साथ आपसे बातचीत हो रहा है जियो जियो भारत में। तो
0: अच्छा
1: दिक्कत क्या होता है, जियो भारत में थोड़ा बहुत साउंड के कोई प्रॉब्लम है क्या? साउंड का कोई प्रॉब्लम आप दिखाई दे रहा है?
0: नहीं नहीं नहीं बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है आपका आवाज,
1: जी जी जी जी
0: बहुत ही
1: लेकिन
0: बढ़िया
1: बहुत
0: आवाज।
1: ट्राई कर रहा था बड़ा मोबाइल से आपसे बातचीत करने का,
0: अच्छा जी
1: लेकिन भाग्य इतना सुप्रसन्न नहीं है।
0: जी
1: लेकिन ये आखिरकार आपने मेरा बातचीत सुन लिया
0: जी
1: अच्छी
0: जी
1: ढंग
0: जी
1: से। और आज के गाने का मेरा फरमाइश है, फिल्म का नाम है रात और दिन,
0: ओके
1: और गाने का बोले से दिल की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ, महफिल में अब कौन है अजनबी, मेरे पास आओ, ऐसे करके गाने हैं।
0: जी बहुत
1: और
0: ही एवरग्रीन
1: बहुत ही
0: सॉन्ग है
1: बढ़िया गाने
0: जी,
1: हैं मेरे दोस्त।
0: एवरग्रीन सॉन्ग
1: और
0: है।
1: जी कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ
0: हाँ
1: मेरे
0: जी
1: दोस्त।
0: बिल्कुल हाँ जी
1: पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसका नाम है बके बागेरा जी,
0: बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद।
1: सेकेंडली हमारे नूरी मैडम के लिए, और है लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश, और है पुरुषोत्तम कुमार जी फ्रॉम कश्मीर, और है अमर सिंह साहू जी, श्रीकांत जोशी जी, विजय सिंह लखेरा जी, और हमारे धर्मनगर से मेरे छोटे भाई अविनाश जी और प्रेमजी चक्रवर्ती जी के लिए, और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं। वो एकदम भूल गया, हमारे आसाम के एक अच्छे कलाकार है, उसका नाम है अमल बसुमतारी जी के लिए,
0: हाँ जी
1: है ना?
0: जी जी जी बिल्कुल
1: और बहुत अच्छा लगा दोस्त आपसे
0: जी
1: मेरा बातचीत हो गया। तो चलिए बातचीत को यही पे विराम देता हूँ। बहरहाल
0: जी
1: आज जगन्नाथ रथ यात्रा है।
0: जी
1: जय
0: जी जी जी
1: जगन्नाथ,
0: बिल्कुल जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ
0: जी।

0: तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं दिनेश शर्मा कैसो
0: जोरहाटर पर। दिनेश शर्मा
1: प्रथम बार कने फोन कैसो।
0: ओके, कॉल करा कने बहुत बहुत भाल लगी से। की करे आपनी?
1: मैं ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड कोई आसु।
0: अच्छा, ओके ओके,
1: नाजी आसले घर पालो बर्तमान घर आसो।
0: अच्छा ओके, अपनी कॉल पर पाले नम्बर तो अमर।
1: मैं अपना हरदुरा पा फोन नम्बर तो ललो।
0: अच्छा अच्छा, अपनी अमर प्रोग्राम तो हुने न?
1: আচ্ছা
0: আচ্ছা, খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি।
1: বহুত ভাল লাগে।
0: হয় হয়, অ'কে, বহুত বহুত ধন্যবাদ।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, शेख जफर हसन, क्वाड जिला रोहतास, बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जफर साहब,
1: आपके दिल से मैं कह रहा हूँ कि आपकी मैं इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ कि एक ईटानगर में एक बेहतरीन उद्घोषक से मैं बात कर रहा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो सुन लीजिए।
0: हाँ जी।
1: कि हमने सीने से लगाया, दिल न अपना बन सका, मुस्कुराकर तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो बिछड़ने वाली ऊपर वाली बात थी, मतलब क्या रहा।
0: और अगला शेर।
1: दुश्मन है जमाना तो कोई बात है मुझ में, हर शख्स का दुश्मन ये जमाना नहीं होता।
0: हर शख्स का दुश्मन ये जमाना नहीं होता।
1: जी
0: क्या बात है, क्या बात है। शेख साहब कहाँ से ढूंढ लाते हैं आप अपने बेहतरीन शायर। आपकी शायरी और आपसे तो हमें प्यार हो गया है शेख साहब।
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: से भी प्यार हो गया, आपसे भी प्यार हो गया है।
0: जी जी जी
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी
1: जी सर। तो
0: जी।
1: और फिल्म का नाम मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ।
0: जी जी जी
1: जी, इसे मोहम्मद रफी ने गाया था। तो दो लाइन सुन लीजिए।
0: हाँ जी बिल्कुल। जी जी
1: चल में सजा लेना कलिया, जुल्फों में सितारे भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: ये शेर से कच्छ गाना सर
0: जी
1: जो सुनाया।
0: जी जी जी इतने बेहतरीन गीत। और आप हमेशा पुराने गीतों को ही फरमाइश करते हैं, तो शेख साहब हम जानना चाहेंगे आपसे।
1: इसकी वजह है बता देता हूँ।
0: हाँ जी जी बताइए। जी जी बिल्कुल।
1: क्योंकि मैं पुराना श्रोता रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ। हमारी क्लब का स्थापना हुआ था केसरी रेडियो श्रोता संघ 1970 में।
0: ओके जी।
1: जिसमें कि दो हमारे श्रोता मर गए, बाकी जिंदा है, सब बाहर में है।
0: अच्छा।
1: मैं एक दोस्त और है, बस स्क्वाड में 12-14 हजार की जनसंख्या है हमारी बस्ती की।
0: अच्छा अच्छा।
1: बाकी बाहर में लोग हैं। और जाते 1973 से श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हिंदी सेक्शन कोलंबो 7 एक पता पर। ऊपर में जो फरमाइश होती थी बिजली प्रोग्राम का नाम अध्यक्ष करते सब जाता था। 1973 से लेकर 2000 तक तो मैं आपको श्रीलंका से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए कि जो श्रोता
0: अच्छा।
1: इसमें भाग ले रहे हैं वो भी श्रीलंका से जुड़े हुए, तो हमारी बात वो काटेंगे नहीं।
0: अच्छा जी।
1: हमारी
0: जी,
1: बात इत्तेफाक भी करेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: उसके बाद तो पुरस्कार का जमाना था, आकाशवाणी में तो धूम मचाए हुए थे हम।
0: अच्छा।
1: आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ आपको, रेडियो स्टेशन सरकारी
0: जी,
1: रेडियो
0: जी,
1: स्टेशन
0: जी,
1: या गैर
0: जी।
1: सरकारी या प्लस पोस्टकार्ड से आपकी पसंद जो है या पसंद आपकी जो भी है आपकी प्रवेश पर मैं जुड़ा हुआ हूँ। और पुराना हम है किसी पुराने ही गाने को मैं पसंद करता हूँ।
0: जी जी जी लेकिन
1: पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना।
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जी जी जी जी
1: सबका एक ख्याल नहीं रह सकता है और न बात रह सकती,
0: इतनी
1: की
0: अपना
1: अपना पसंद होती है। तो ये बोगड़ा साहब है ना।
0: हाँ जी, मैं बागरा बोल रहा हूँ। जी जी
1: बागरा। जी जी यार भूल जाता।
0: जी आपको
1: बड़े
0: याद है
1: बात है कि वहाँ के आप रहने वाले हैं और कितना अच्छा आप बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, साफ बोलते हैं भी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: हाँ जी जी जी तो अब हम बता देते हैं, इसमें एक लाइन आउट जोड़ता हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: जो जो पहला दोस्त का नाम जो मैं ले रहा हूँ वो इंटरनेशनल श्रोता है। जी वो उनका नाम है उस्मान अली अंसारी, अशपुरा मऊ के उत्तर प्रदेश।
0: ओके।
1: जी ये इंटरनेशनल श्रोता है। जी तो
0: ओके।
1: इन्होंने भी इनाम भी जीता है, वॉइस ऑफ जर्मनी,
0: अच्छा,
1: चाइना मतलब की CRI साइना रेडियो इंटरनेशनल और शिवर रेडियो, ये 3 जगह से उन्होंने प्राइज भी जीता है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जी,
0: जी, जी
1: और सम्मेलन भी इनाशोरों का देश विदेश का वो मऊ में करा चुके हैं।
0: अच्छा
1: जी जी से हमसे रब्ता जो है, अगर इनकी मोबाइल नंबर अगर कोई सोचा चाहे अगर हमसे रब्ता करे तो मैं दे सकता हूँ।
0: जी जी जी
1: से उस्मान अली अंसारी बताएंगे।
0: ओके।
1: जी
0: जी
1: सर
0: जी, जी।
1: ऐसे दोस्त। और ये एक अब दोस्त जो हमारे हैं, अब देखिए कितना दूर के हमारे दोस्त है, बात तो रोज होते हैं।
0: जी
1: ये है भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार, अनवर बिहारी और गणेश दास बंगाली। जी ये सब रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए हैं।
0: ओके। तो आप एक आपके काफी मित्र हैं जो रेडियो से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी जी
0: ओके।
1: कहीं से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं झूठ की कोई बात ही नहीं है। जी तो
1: जी
0: शेख साहब कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र वर्मा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं।
0: जी, रेडियो से तो आप काफी सालों से जुड़े हुए हैं,
1: जी सर
0: और
1: जी
0: जी आपसे काफी अच्छी बातें होती हैं रेडियो पर। आप अपने जगह के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं, लेकिन आज हम
1: जी
0: अपने
1: जी
0: आपकी यादों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं।
1: जी पूछिए सर जी,
0: जी जी
1: क्या
0: जी
1: यादों को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं?
0: जी सबसे पहले तो ये बताइए, आप रेडियो से कब से जुड़े?
1: सर रेडियो से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर
0: 1900
1: बचपन से ही, मतलब रेडियो सुन रहा हूँ मैं 1985 से, मतलब बीना का सिबा का गीतमाला आता था जब से सुन रहा हूँ मैं सर। मेरे पापा को बहुत शौक था रेडियो सुनने का, वो मतलब पुराने दौर में जब वो घर में रेडियो होते थे बड़े वाले वाल वाले, उस रेडियो सेट में मेरे पापा सुनते थे, और मेरे पापा जब वो सुनते थे तो मुझे भी बचपन में धीरे धीरे वो रेडियो में कैसे आवाज आती है, कैसे सुनने का शौक, मतलब ये शौक कब पैदा हो गया इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे इससे लगन लग गई हमारी।
0: क्या बात है।
1: और करीब 40 सालों से रेडियो से ज्यादा हो गया है मुझे सुनते हुए, और जब से

0: की दुनिया में रह रहे हैं सर।
1: ओके और आप पहले किस तरह से अपनी फरमाइशें भेजा करते थे, खट के जरिए?
0: जी सर, पहले मैं मेरे स्थानीय चैनल है पास में इंदौर आकाशवाणी, वहां पर पत्र भेजता था, तो उसके माध्यम से मेरी पत्र में मतलब फरमाइश पूरी होती थी और मेरी फरमाइश का गीत बजाया जाता था। सन 2000 से पहले से मैं पत्र लिख रहा हूँ, मतलब ये 1985 के बाद में मतलब मेरे धीरे धीरे पत्र लिखना चालू हुआ। इंदौर आकाशवाणी तक ही पहले सीमित था मैं,
1: अच्छा जी,
0: फिर इंदौर आकाशवाणी पर सन 2000 के अंदर मतलब FM रेडियो स्टेशन चालू हुआ था, मतलब उसको FM में कन्वर्ट किया गया था
1: ओके जी।
0: सन 2000 में, विविध भारती इंदौर FM में कन्वर्ट हुआ था।
1: अच्छा
0: वहां पर से एक लाइव टेलीफोन प्रोग्राम चालू हुआ था हेलो फरमाइश का ही, और वो 30 दिन आता था।
1: अच्छा वाह क्या बात है।
0: हाँ, और वो 11 बजे आता था, बस उसमें बस पहला फोन मेरा उसी आकाशवाणी इंदौर में लगा था, और जब से ये फोन इन प्रोग्राम का जो जरिया चालू हुआ है वो अभी तक निरंतर जारी है। और पहले स्थानीय चैनल पे सुनते थे, फिर धीरे धीरे ये जो रेडियो का डिजिटल हुआ है, रेडियो प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर आ गया है, अब तो और भी तरक्की हो गई है। प्रसार भारती का एक नया ऐप आ गया है, OTT प्लेटफॉर्म, अब इस पर भी सारे आकाशवाणी केंद्र भारत के सुनाई देते हैं। और फिर 2000 सन में यहाँ FM स्टेशन जो चालू हुआ था ना, जैसे इस पर सुनाई देने लगा था उज्जैन में भी,
1: ओके
0: और पहले वहां पर हेलो फरमाइश प्रोग्राम में LP रिकॉर्ड से गाने बजाए जाते थे। आज देखो, पुराना दौर तो रेडियो का LP पे ही था, सारे गाने जो कलेक्शन आकाशवाणी में होते थे वो LP पर ही होते थे।
1: जी जी जी जी हाँ जी।
0: अब फिर धीरे धीरे ये रेडियो का डिजिटल हुआ, रेडियो बदलता गया, और अब ये डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अब तो मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे मोबाइल पे सारे प्रोग्राम आकाशवाणी और रेडियो के सुनते हैं,
1: तो
0: और
1: आप
0: आकाशवाणी भी फिर धीरे धीरे अपग्रेड हो गए, उन्होंने भी अपने कंप्यूटर के माध्यम से जो भी लिसनर फोन लगाते हैं उनके गानों की चॉइस को पूरा करते हैं। और
1: जैसा कि
0: सर, हेलो फरमाइश प्रोग्राम का एक दिलचस्प इंदौर आकाशवाणी की बताता हूँ
1: जी
0: कि यहाँ पर LP से जब गाने बजते थे ना, तो पूरी एक टीम रहती थी तैयार उस गाने को खोजने के लिए। हाँ, जैसे
1: जी
0: किसी श्रोता ने लाइव टेलीकास्ट में प्रोग्राम में पसंद किया गाना कि मुझे संघर्ष फिल्म का गीत सुनना है, तो वो संघर्ष फिल्म की LP उनको निकालना पड़ती थी, और उनका वो नंबर कलेक्ट रहता था कि LP कौन से खांचे में, किस नंबर पे, किस सीरीज पे रखी हुई है। तो
1: बहुत ही मेहनत का काम होता
0: वो
1: था
0: बहुत मेहनत का काम होता था सर जी,
1: जी।
0: वो मैं समझता हूँ उस चीज को, बहुत मेहनत होती थी उसके अंदर LP में। और मैं अधिकतर वहाँ गाने पुराने पसंद करता था, ताकि थोड़ा समय अपन बात कर सके।
1: ओके
0: जी सर जी, ये तो सब आकाशवाणी और आप जितने भी हैं जो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, सभी की मतलब श्रोताओं के लिए धन्यवाद है आपके लिए, कि
1: जी
0: सभी के गाने की चॉइस को आप पूरा करते हैं सर जी। तो
1: जी
0: बस यही
1: जी
0: यादें हैं सर जी हमारी रेडियो से, और मेरे
1: जी
0: पिताजी का जो रेडियो की दुनिया से मतलब मेरा शौक लगा है, बस मैं रेडियो के सहारे ही मेरे पिताजी को याद करता हूँ। मेरे पिताजी तो नहीं है,
1: जी, ओके
0: पर रेडियो के माध्यम से उनकी यादों को अपने दिल में सजाए हुए रखता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जी। तो
0: जी
1: लोकेंद्र जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने रेडियो के बारे में, और आपकी इस तरह से रेडियो से जुड़ा तो बहुत ही अच्छा लगा, और आगे भी इस तरह से बातें करते रहेंगे। तो
0: बिल्कुल सर
1: अब
0: जी, बहुत
1: जी
0: यादें हैं रेडियो की, तो मतलब बचपन से लेके अभी तक की।
1: जी जी जी अगली बार जब कॉल लगेगा तब फिर से बात करेंगे इसके बारे में।
0: जी सर जी,
1: जी जी
0: और गाना मेरा रहेगा संघर्ष फिल्म का, इसमें गाना है तुझे आजकल तुझे चाहती, ये भी टेलीफोन पर ही फिल्माया गया गाना है सर।
1: ओके जी, तो किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
0: ये शारदा प्रसाद जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, अर्जुन प्रधान जी हैं, टेक चंद्र अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी, अनु कुमार भट्टाचार्य जी हैं, बाइकोन मुंडा जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, और दिलीप पाहुजा जी हमारे मित्र।
1: तो लोकेंद्र जी कॉल
0: और
1: करने
0: ये
1: के लिए बहुत
0: आकाशवाणी के लिए भी एक गीत रहेगा,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: तुझे रात दिन तुझे चाहते हैं।
1: जी, चाहते हैं और चाहते रहेंगे। लोकेंद्र जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं अमल बात कर रहा हूँ असम से।
0: जी अमल बसुमतारी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
0: जी
1: हमारे असम में भी कल रात से बारिश हो क्या, अभी थोड़ा मौसम ठंडा है।
0: अच्छा जी,
1: ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रहा है।
0: बढ़िया।
1: और मैं ऐसे मौसमों में एक गानों की फरमाइश करना चाहता हूँ।
0: हाँ जी बिल्कुल, कहिए कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे।
1: इंग्लिश बाबू डीसी मैम फिल्म का दीवाना, मैं तेरा दीवाना, ये गाना को सुनना है।
0: जी जी जी और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे।
1: खासकर मैं इस गाने को आपको ही डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके थैंक यू सो मच।
1: और आकाश और एनएफएम की सभी आरजीसों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। और हमारे दोस्त को डेडिकेट करना चाहूंगा, भाई कौन मंदा
0: जी,
1: और विमल बसुमतारी, रमेश पत्रो, जोगेंद्र रोंगपी, रुखो बेले मेथा, हितेंद्र दास, देवाशीष हजूरिका, प्रेमजीत चक्रवर्ती, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी, सुटापा भाभी, और हमारे आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ त्रिपुरा से, अविनाश तेली, और भगवान सिंह परमार को, रमेश प्रजापति को, राकेश को, शिवा लोहर को, और हमारे असम में मेरी बहन है अंजलि बसुमतारी है, और सभी आकाशवाणी ईटानगर सुनने वाले दोस्त को डेडिकेट करो सर।
0: ओके तोमल जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आदरणीय महोदय, सादर नमस्कार
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी। हृदय से धन्यवाद मानवर। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सिद्धार्था सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं? मौसम कैसा है? बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है?
0: जी शारदा प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और बारिश का आनंद ले रहा हूँ।
1: जी, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वर्षा ऋतु का आनंद लेते रहिए।
0: जी
1: और आपसे प्रार्थना है
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: थोड़ी सी वर्षा हमारे मथुरा वृंदावन में भेज दीजिए, क्योंकि मथुरा वृंदावन में चमचमाती हुई धूप है, खिली खिली और मंद मंद गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, और ऐसे वातावरण में आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी काश ऐसा संभव हो पाता कि आपके वहां मैं कुछ बारिश भेज देता।
1: जी,
0: बस यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके वहां फिर से बारिश।
1: भगवान भास्कर अपने प्रचंड किरणों के साथ में उपस्थित रहते हैं।
0: तो धूप से बचे रहिए, रेडियो सुनते रहिए, घर के अंदर बैठ के कूलर और पंखा का इस्तेमाल कीजिए।
1: जी,
0: जी
1: बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर के अंदर रहते हुए गीत संगीत से जुड़ा रहता हूँ और गीत संगीत सुनते हुए मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति गीत संगीत से जुड़ता है और उसमें मग्न रहता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: उसे
0: जी
1: कोई चिंता नहीं होती, कोई अवसाद नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता है। इन सब चीजों से मुक्त होने से आदमी हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न चित रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज से ये पता चल रहा है हमें कि आप बहुत ही खुश हैं घर के अंदर
1: जी
0: बैठे
1: जी
0: हुए।
1: बिल्कुल।
0: तो शारदा प्रसाद जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: बस ईटानगर में बारिश हो रही है
0: जी
1: और तो यही उम्मीद करता हूँ कि एक वर्षा ऋतु का गीत सुन लिया जाए आकाशवाणी ईटानगर से। फिल्म
0: जी बिल्कुल।
1: का नाम है 90

0: 1942, I love a story. Rim him, rim him, rum jum, rum jum, jiggy, jiggy, rutme, hum, tum, tum, hum. ये श्रीला प्यारा गीत है कुमार सानू साहब की आवाज में, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर पहुंचाने हेतु।
1: जी जरूर सुनाएंगे और यही आशा करते हैं कि इस गीत के साथ साथ आपके वहाँ पे रिमझिम बारिश हो जाए।
0: जी जी धन्यवाद जी। स्वागत है, अभिनंदन है वर्षा ऋतु का
1: जी।
0: और वर्षा रानी जो है हमारे ऊपर में मेहरबान हो जाए
1: जी,
0: इसी उम्मीद के साथ में
1: जी।
0: ये प्यारा सा खूबसूरत गीत सादर समर्पित करता हूँ हमारे मित्र योगी वाड्रा साहब को।
1: थैंक यू।
0: और वाड्रा साहब के साथ साथ में याद करना चाहता हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सरश्री लोकेंद्र वर्मा जी, अविनाश जी, आशुतोष जी, राजू यादव और तेग चंद्र अग्रवाल, सतीश रघुवंशी जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम जी, पूरम जी, पुष्कर नाथ जी और इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए शारदा प्रसाद जी, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: जी हृदय धन्यवाद, आभार, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी सर, थैंक यू।
0: तो
1: सर
0: आप?
1: कैसे हो?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आप अपना नाम भी बता दीजिए।
1: मैं हरदोरा बोल रहा हूँ, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोपुर असम से।
0: ओके, हरदोरा कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वहाँ का
1: हाँ हाँ
0: मौसम
1: सर,
0: कैसा है अभी?
1: आज तो बारिश नहीं हुआ है, कल तो बहुत जोरदार बारिश हुआ था।
0: अच्छा जी, कल?
1: आज बारिश नहीं हुआ तो बहुत ठंडा पड़ रहा है।
0: अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: वहाँ का कैसा है? हाँ
0: जी हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है।
1: हाँ
0: यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया है मौसम। जी
1: जी जी
0: अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप, घर से या बाहर?
1: सर, मैं घर से ही बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, घर से बोल रहे हैं ना। तो
1: हाँ।
0: चलिए कहिए, घर में बैठे बैठे कौन सा फिल्म का गाना आज सुनना चाहेंगे आप?
1: डन नया फिल्म से सोनू निगम और सरना सरगम के आवाजों में बहुत, मुझे गान थोड़ा याद नहीं है।
0: कोई बात नहीं।
1: हाँ, गाना बहुत दूर जाने की दिल चाहता, उस गीत में आवाज दिया था सोनू निगम और सरना सरगम ने।
0: अच्छा, सोनू निगम और साधना सरगम, और
1: हाँ
0: किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे? हरिद्वारा जी।
1: सर, ये गीत, हाँ, पहले तो आपको सुनाऊंगी ये मैं गीत।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और निलोत्पल द्वारा, दिनेश शर्मा, देवदत्त, सुम्बी दत्त, भाईकन मुंडा, रमेश पत्र और हेलो फरमाइश से जुड़े रहे सभी श्रोता के लिए।
0: ओके, तो हरिद्वारा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप, सुनाइए।
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए आप कैसे हो।
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, आपसे बात करके हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: बताऊँ आपको, सोयाबीन की फसल लगाई हमने।
0: जी
1: जी, तो अभी खरपतवार निकालने का काम चल रहा है यहाँ पर। हाँ जी, और साथ में भी हम कार्यक्रम सुनते हैं। और मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि बरसात कम हो रही है।
0: ओके,
1: अभी 8 दिन से बरसात नहीं हुई है तो थोड़ी जरूरत पड़ रही है सोयाबीन की फसल के लिए।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो इन
1: और
0: सभी,
1: बताऊँ आपको, कुछ लोगों ने ऑरेंज के बगीचे भी लगा रखे हैं यहाँ पर।
0: अच्छा ऑरेंज होता है वहाँ
1: हाँ
0: पे।
1: जी हाँ।
0: ओके वाह वाह, क्या बात है। तो प्रेम सिंह जी, आज कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: हाँ, बरसात बहुत कम हो रही है तो हम बरसात के लिए ही गाना सुनेंगे।
0: जी जरूर।
1: फिल्म का नाम है प्यासा सावन और गाने के बोल है, और हम तो यही कहेंगे मेगा से परदेश न जाए, पूरे भारत वर्ष में जोरदार बारिश करे ताकि सभी फसलों को अच्छा पानी मिले, सिंचाई का साधन भरपूर रूप से सभी के लिए हो
0: जी जी
1: और पूरे भारत देश में खुशहाली छाए।
0: जी बिल्कुल। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी, साथी तो हमारे बहुत सारे, लोकेन वर्मा, भगवान सिंह परमार, आशुतोष अविनाश, संगीता जी, सुनील जय भोपाल से, रमेश टेलर है, भगवान सिंह परमार है, और आपके साथ भी सुनना चाहेंगे।
0: ओके, तो जरूर सुनाएंगे आपको पसंद का गाना। प्रेम सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कुछ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

0: Alright, that brings us to the end of today's session. Hope you enjoyed the mix and found a song or two to vibe with. Thanks for tuning in and spending your time with me. This was Western Music Program, only on Akashwani Itanagar.
1: तो श्रोता दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात. और अब शुरू होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत.

तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 9:28, यानी अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस तीसरी प्रसारण सभा यानी थर्ड ट्रांसमिशन को रैप अप करने का। आई होप आपका रात का मूड बिल्कुल सेट हो गया होगा हमारे साथ, लेकिन आपके इस फेवरेट स्टेशन को स्मूथ, फ्लॉलेस और अनइंटरप्टेड आप तक पहुंचाने के पीछे होती है एक जबरदस्त टीम। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता यानी इंजीनियर ऑन ड्यूटी पे थे ताना आतुन। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर मेकिंग द मैजिक हैपन बिहाइंड द माइक। और मेरे प्यारे लिसनर्स, अब आप लोग अच्छे से डिनर करो, रिलैक्स करो और मीठी मीठी नींद की तैयारी करो। मैं चलता हूँ, लेकिन हम फिर मिलेंगे कल इसी स्टेशन से। दिस इज योर फेवरेट आरजे साइनिंग ऑफ फॉर द नाइट। टेक केयर, स्टे सेफ एंड रिमेंबर, कीप द पॉजिटिविटी हाई एंड द वॉल्यूम हायर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए जैव अर्थव्यवस्था 2035 हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
1: नमस्कार, बायो इकोनॉमी 2035 के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली केडिया। डॉक्टर शैली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते, धन्यवाद।
1: डॉक्टर शैली, जैविक अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी कुछ नया टर्म है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में इसके मायने समझा सकें?
2: जब हम बायो इकोनॉमी की बात करते हैं या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो सरल शब्द में कहूँ तो जैव अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पौधे, पशुओं, सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और जितनी जो रेन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसका यूज करके हम अलग अलग चीजों में उसका यूज करते हैं, जैसे कि हम दवाइयां हो, भोजन हो, ईंधन हो, रसायन हो, सामग्री हो, हम उसका उपयोग ये सारे चीजों में करते हैं और हम अर्थव्यवस्था के प्रति उसको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तीन शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहें, जिस तरीके से इंडिया में इसको देखा जा रहा है या ग्लोबली भी देखा जा रहा है, एक तो जैसे उस शब्द में ही है जैव अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, दूसरा रोजगार और तीसरा पर्यावरण। तो हम जब इंडिया में उसको बोलते हैं तो बायो E3 पॉलिसी बोलते हैं, तो बेसिकली बायो इकोनॉमी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकता है। अभी हम देखें तो बहुत चर्चा में हॉर्मूज है, उसके कारण हमें कैसे एनर्जी सिक्योरिटी और पेट्रोल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स जो हम करते हैं उससे हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके एनर्जी सिक्योरिटी में भी बायो इकोनॉमी से हमारा रिड्यूस डिपेंडेंस हो सकता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इंपोर्ट्स, एंड ऑल्सो लोअर पोल्यूशन और डेफिनेटली जैसे रोजगार की हम बात करते हैं।
1: आपने कहा कि बहुत सारा इसका विस्तृत व्यापक अर्थ है, तो मोटे तौर पर इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं?
2: एकदम मोटा मोटा देखा जाए तो अभी जस्ट 4-5 दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप देखा जाए तो 4 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका जैव औद्योगिक क्षेत्र, बायो इंडस्ट्रियल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका बायो फ्यूल हो जाता है, जो ईंधन के प्रति काम आता है, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स आता है।

0: केमिकल्स होते हैं, बायोप्लास्टिक्स होते हैं, आजकल प्लास्टिक भी बड़ी बड़ी समस्या है। दूसरा एक क्षेत्र है जैव फार्मा, उसको बायो फार्मा, या जो आपके स्वास्थ्य के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू हो। कोविड के टाइम भी इंडिया में पूरे वर्ल्ड एक वैक्सीन रेस में जुट गई थी। बायोसिमिलर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज, जीन थेरेपीज, तो ये सारे बायो फार्मा और हेल्थ क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है आपका जैविक कृषि, विच इज बायो एग्रीकल्चर, जिसमें आप देखा जाए तो जैविक कीटनाशक या फिर आपके बायो फर्टिलाइजर, बायो खाद्य जो होते हैं, बायो स्टिम्युलेंट्स, और इवन बायो सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन के लिए, और क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, देखते जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे निपटने के लिए ड्रॉट रेजिलियंट क्रॉप्स हो गया, तो ये आपका जैव कृषि में आता है। और चौथा है आपका जैव सेवाएं और अनुसंधान। अगेन आप देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको आप अगर यूज करके, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में यूज करें, क्लिनिकल रिसर्च में यूज करें, तो उससे बहुत ही बारीक लेवल का रिसर्च हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, और जैसे जिससे आपके नए नए दवाएं की खोज हो सकती है।
1: औद्योगीकरण एक महत्वपूर्ण जरूरत है अगर हम रोजगार की बात करते हैं या हम उत्पादन की बात करते हैं। तो अगर बायो इंडस्ट्री का जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिसमें बायोफ्यूल की भी आपने बात करी, बायोप्लास्टिक की भी बात करी, इस बारे में बताएं ये किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हमारे लिए एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा सकता है और अर्थव्यवस्था को सहारा भी दे सकता है।
0: तो जैसे कि हम बायो इंडस्ट्री में, मैं जैसे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बायोफ्यूल का बात कर ले, बायोगैस की बात कर ले, तो हम जो आप समझ लीजिए कोयला या फिर कोई फॉसिल फ्यूल यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जगह अगर हम बायोफ्यूल यूज करें, तो एक तो वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है, दूसरा जो बाहर से फ्यूल आता है उस पे कम डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक दूसरा बड़ा एरिया है आपका प्लास्टिक्स, हम रोज प्लास्टिक्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी अलग अलग चीजों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक यूज करता है, अगर उसके जगह हम बायो प्लास्टिक्स यूज करें तो वो थोड़ा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, तो खेती भी उसी मात्रा में करनी पड़ेगी, उससे फिर रोजगार का ये लिंकेज है कि किसान को उससे रोजगार मिलेगा, और जो उसके जो बीच में जो उसके सप्लाई चेन्स है उसमें जितने लोग हैं उसमें रोजगार मिलेगा। और थोड़े से और आप थोड़े से हायर लेवल पे जाए तो रिसर्च में, या जो आपका जो बायोटेक वाला जो टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी काफी बढ़त हो सकती है।
1: जी, आपने जैसे औद्योगिकरण की बात करी तो इसमें आपने एक जिक्र किया कि बायोप्लास्टिक का, प्लास्टिक निश्चित तौर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा आज के डेट में चुनौती है। तो ये बायोप्लास्टिक से इस खतरे को कितना कम किया जा सकता है?
0: तो डेफिनेटली जब हम बायोप्लास्टिक्स की बात करते हैं, तो अभी फिलहाल जो भी मटेरियल है, फिलहाल अभी तक एक कोर R&D स्टेज पे है, जिसमें आप मटेरियल्स की बात करें, कौन सा
1: जी
0: मटेरियल, उसमें आपका एल्गे भी आ सकता है, उसमें आपका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है खेती करने के बाद, जो पौधा बच जाता है उसको जलाने के जगह उसको आप यूज करें बायो पैकेजिंग में, तो क्योंकि प्लास्टिक्स आपके अलग अलग टाइप के पैकेजिंग में यूज होता है, आप जो भी सामान हम लाते हैं किराने की दुकान से, ज्यादातर चीजों में वो, चाहे वो उसमें वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, तो आप देखा जाए तो प्लास्टिक का यूज बहुत सारी चीजों में होता है, और अभी फिलहाल हम देखा जाए तो अगर हम वो सारा पैकेजिंग को ही रिड्यूस कर सके या रिप्लेस कर सके बायो पैकेजिंग से प्लास्टिक्स की जगह, तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब देखा जाए बायो प्लास्टिक अभी भी थोड़ा सा न्यू एरिया है, पर इसमें इसीलिए जो नीति आयोग ने अभी एक रोड मैप बनाया है वो इसमें कह रहा है कि आपको 50,000 करोड़ की एक फंड सेटअप किया जाए, उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू ये सारी इनोवेशंस को प्रमोट किया जाए जो आपकी एनवायरमेंट प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करें।
1: आपने बताया 50,000 करोड़ का एक फंड नीति आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है। अगर मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसका कितना व्यापक बाजार है, और अगर GDP यानी अर्थव्यवस्था में जो GDP का योगदान रहता है उसमें ये बायो इकोनॉमी का कितना योगदान फिलहाल है?
0: तो अगर हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काफी तेजी से बढ़ रहा है, और देखा जाए इंडिया में ही अगर हम 10 साल पहले 2014 के करीब हम देखें, तो उसमें उस समय उसका बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन $10 बिलियन के करीब, और अभी आज के दिन में करीब करीब 4.8% या आप समझ लीजिए लगभग 5% ऑफ जीडीपी बायो इकोनॉमी बेस्ड सेक्टर से ऑलरेडी आ रही है। और इसका नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट आया है उसमें ये तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2047 तक 2.6 ट्रिलियन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उसको हो सकता है और 2035 तक 6.91 बिलियन। बट हम देखा जाए तो अगर हमें पिछले 10 सालों में लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी को।
1: जी, मतलब 2014 में जो सिर्फ 10 अरब डॉलर का बाजार था भारत की अर्थव्यवस्था में, जिसका इतना योगदान था, वो अब बढ़ते बढ़ते 2025 तक वो तकरीबन 195 अरब डॉलर तक पहुंच गया। तो बहुत बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में दे रहा है, तकरीबन 5% का अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। अब अगर हम बात करें तो इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन में भी हमको काफी मदद मिलती होगी। और अभी आपने जिक्र किया था जो खेती के जो रेजिडुअल्स हैं, मतलब खेती में करने के बाद जो बच जाता है, जिस तरह से पराली जलाने की भी समस्या होती है, क्या खेती में इस बायो इकोनॉमी को या बायो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हम उसका कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं?
0: डेफिनेटली अभी बहुत सारे प्रयास जारी हैं और कोशिश किया जा रहा है कि पराली को यूज करके उससे पैकेजिंग मटेरियल या फिर उससे बायो एनर्जी बनाया जाए, उसको मशरूम ग्रो करने के काम में भी लिया जा रहा है, या उससे ईंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है
1: जी
0: उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। पर उसके अलावा भी हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी जैसे बताया जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए देखा जाए तो सूखा गर्मी इन सबों को मतलब टॉलरेट करने वाली जो क्रॉप वेराइटीज है वो भी पार्ट है। फिर उसके बाद आप जो बोलते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर में जो जाते हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो कीटनाशक हो, तो वो भी बायो पेस्टिसाइड उसमें यूज करके या बायो फर्टिलाइजर्स यूज करके आप सॉइल हेल्थ भी इंश्योर कर सकते हो और प्लांट प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इनमें बहुत पोटेंशियल है आज के दिन में। बट ऑल्सो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेक्टर, तो उसमें आप देखा टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, इनोवेशन, इसमें भी बहुत सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि कि वो टेक्नोलॉजी को एक लैब से फील्ड में या एक लार्ज स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन तक लेके जा सके।
1: आपने जैसे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र अब उतना नया नहीं रह गया, लोगों की जागरूकता खास तौर पे इसके प्रति काफी हो गई है, तो सरकार ने भी इस पे बहुत विशेष ध्यान देना शुरू किया है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बचाव करने के लिए ये जो बायो इकोनॉमी है, जैविक अर्थव्यवस्था है, वो सहायक या योगदान कर सकती है?
0: बिल्कुल, सबसे पहले ही जो बात की थी फ्यूल की बात हो रही थी, एनर्जी की बात हो रही थी, अगर हम कोयला या फॉसिल फ्यूल के जगह हम बायो फ्यूल यूज करते हैं या बायो एनर्जी यूज करते हैं एक सही मात्रा में, तो उससे डेफिनेटली आप एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की तो बात हम कर ही रहे हैं, पर एक जो एक क्लाइमेट अडेप्टेशन होता है
1: जी
0: स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आप देखिए क्रॉप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल लीजिए या क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर बोल लीजिए, तो वैसे टेक्नोलॉजीज वैसे क्रॉप्स अगर डेवलप हो जो ड्रॉट को सह पाए, तो इससे डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों में ही बहुत फायदा होगा।
1: जी, वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो ये बायो इकोनॉमी का कितना बड़ा योगदान रहता है? फिलहाल अगर इसका आकार देखा जाए तो वैश्विक तौर पे कौन से देशों में बहुत ज्यादा अभी इसको प्रभावी तौर पे काम ले रहे हैं इसे?
0: वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें आपके जो टॉप कंट्रीज हैं उसमें डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां पे बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भी है। यूरोपियन यूनियन में देखा जाए उधर भी मतलब काफी बड़ा योगदान है बायो इकोनॉमी का। तो ये सारे जो अभी आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, एक ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जैसे देखा जा रहा है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था, तो ये ग्लोबल लेवल पे ये बहुत ही तेजी से ये सेक्टर उभर के आ रहा है, जिसमें आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोप हो, और आज के दिन में देखा जाए डेफिनेटली चाइना, चीन, वो
1: जी
0: भी बहुत तेजी से उभर के आ रहा है।
1: भारत सरकार ने आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए या इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या क्या अक्षय बनाए हैं और क्या इसका टारगेट रखा है, अगर आप संक्षेप में बता पाए?
0: एक तरीके से देखा जाए आज के दिन में भी आप बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अभी भी मुझे लगता है कि एक तरीके से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए कि ये क्या है और उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, थोड़े से और प्रयास की जरूरत है। साइंस लेवल पे या साइंटिफिक कम्युनिटी लेवल पे आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, तो ये सारे अपने बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज करते रहते हैं, वेबिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन निकालते हैं। पर जैसे मेरे ख्याल से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए और उसको थोड़ा सा और सरल तरीके से वो मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे आप अपने रेडियो के माध्यम से इसको आपका ये प्रयास है, पर मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस, चाहे वो इससे लिंक एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस हो, कल को क्या क्या, मतलब आज के दिन में हमारे इतने सारे युवा स्कूल में हैं, वो आगे सोचेंगे कि उनके पास और क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीजों के बारे में, इसके स्कॉलरशिप के बारे में प्रमोट करने के लिए, इससे रिलेटेड जितने कोर्सेज है उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा और एटलीस्ट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इसमें और प्रयास करने की जरूरत है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जैव अर्थव्यवस्था 2035, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग
1: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा में सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
3: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के

0: भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नार्कोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जावोंस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर कई हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: In the Assembly of North Macedonia, President Murmu conveyed the goodwill of 1.4 billion Indians. She described North Macedonia as an important partner in building a stable, multipolar and prosperous global future. After concluding her visit to North Macedonia, she will travel to Romania. Punjab police today thwarted a possible terror conspiracy with the arrest of 17 accused, including 3 women. They were involved in low-intensity grenade attack at the Sadar Moga police station on the early morning of 8th of this month. Among those arrested are 3 main executors of the attack: an improvised explosive device, IED, explosive material, and electronic detonator, and one sophisticated pistol with a magazine have also been recovered from their possession. Punjab Police DG Gaurav Yadav disclosed that a preliminary investigation has revealed that the UK-based mastermind directed the accused to carry out the grenade attack at the Moga police station. In Afghanistan, at least 20 people have died and more than 80 others have been injured after devastating floods struck Parun city in Nuristan province. More than 100 people remain missing following the floods that swept through Parun and nearby areas. India today delivered relief materials, including food items and family tents, to Afghanistan National Disaster Management Authority to support affected communities in the wake of the floods in Nuristan. Hockey India has announced the 20-member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and the Netherlands to be held from the 15th of the next month. Ace defender and drag flicker Harmanpreet Singh will lead the Indian side. Chief coach Craig Fulton is confident that the selected squad has a bright chance to win its own chapter in Indian hockey history. India, drawn in Pool D alongside England, Pakistan and Wales, will play all their pool stage matches in Amstelveen, Netherlands. India will begin their campaign against Wales on the 15th of August. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishw Darpan ke saath main Prashant Kumar. मुख्य समाचार। स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने व्यापार और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ा। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में बाढ़ से 20 लोगों की मौत और 80 से अधिक घायल। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक हड़ताल जारी। और अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत उत्तरी मैसेडोनिया बिजनेस फोरम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच प्रदान करेगा। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वुडनो में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आसियान के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दिखाती है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों

0: के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 जारी किया गया था। श्री राय ने कहा कि ब्यूरो को मजबूत करने के लिए देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 13 से बढ़ाकर कर दी गई है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार अमेरिका ने बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ने एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से बताया कि हमले के कारण बुशहर प्रांत के दश्ती काउंटी के प्रशासनिक केंद्र हॉर्मुज के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। इस क्षेत्र में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC नौसेना से जुड़े सैन्य ठिकाने स्थित हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कनाडा पर अमेरिकी उत्पादों के साथ भेदभाव जारी रखने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस के अनुसार नए शुल्क 30 दिन में लागू हो जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से दोनों मित्र देशों के बीच व्यापार युद्ध गहराने की आशंका है। श्री ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा आने वाले हफ्तों में अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता तेज करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में विनाशकारी बाढ़ से करीब 20 लोगों की मौत हो गई है और 80 से अधिक लोग घायल हैं। तालिबान अधिकारियों के बयान के अनुसार बाढ़ के बाद 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि नुकसान का आकलन करने, लापता लोगों की तलाश करने और राहत कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष बचाव दल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। कुवैत ने यमन के हूती समूह द्वारा सऊदी अरब से संबंधित समुद्री नौवहन पर लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई समुद्री मार्गों पर नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरा है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लाल सागर की सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का आह्वान किया। साथ ही कुवैत ने सऊदी अरब की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए उठाए गए उसके कदमों के प्रति एकजुटता भी व्यक्त की। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित करने और अवैध तथा जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का प्रत्यक्ष परिणाम है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित चार अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग ने तीन बलूच नागरिकों के कथित अपहरण की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये घटनाएं एक गंभीर मानवाधिकार संकट को दर्शाती है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

0: हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाली हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं। जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, गुजराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी टीम का हिस्सा है। मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा को भी टीम में मौका मिला है। भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स साथ पूल डी में है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने व्यापार और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरुद क्षेत्र में तनाव बढ़ा। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में बाढ़ से 20 लोगों की मौत और 80 से अधिक घायल। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक हड़ताल जारी। और अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज।
2: द जेएसी लीडर्स स्लैम द पाकिस्तान।